मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्स, DRM, DTH, न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और OTT वेब पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्रपद माह की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 सितंबर 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस समय 5:56 और 47 सेकंड हो चुके हैं। आरंभ होती है आज की प्रातःकालीन सभा।

0: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, डीटीएच, डीआरएम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद के दोहरे मापदंड के लिए कोई स्थान नहीं है। उन्होंने किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में शंघाई सहयोग संगठन के 26वें शिखर सम्मेलन के सभी सदस्य देशों से आतंकवादियों को उपलब्ध होने वाली आर्थिक सहायता, भर्ती, कट्टरपंथ और सुरक्षित पनागाहों के पूरे तंत्र को ध्वस्त करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत उन सभी प्रयासों का समर्थन करता है जो बाजारों को जोड़ते हैं, व्यापार को बढ़ावा देते हैं और विकास के नए रास्ते खोलते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के घोषणा पत्र में भारत की प्राथमिकताओं को प्रमुखता से शामिल किया गया है।
2: शंघाई सहयोग संगठन के बिश्केक घोषणा पत्र में संवाद को आगे बढ़ाने के लिए एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की भावना को दोहराया गया है। एससीओ सदस्य देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार नहीं है। सदस्य देशों ने आतंकवाद से निपटने के लिए समन्वित प्रयासों का भी आह्वान किया है, जिसमें आतंकवादियों की सीमा पार आवाजाही भी शामिल है। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, बिश्केक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण के मापने योग्य सुधार हो सकें। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकियों को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने कल केंद्र सरकार, दिल्ली पुलिस, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और असम की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के शनिवार को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में कल केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की समीक्षा की। कल नई दिल्ली में आयोजित एक बैठक में चिन्हित 100 जिलों में योजना में तेजी लाने, योजनाओं के बीच समन्वय को मजबूत करने और किसानों के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया गया। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है।

0: ये नियम 15 सितंबर से अगले महीने 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। नई भंडारण सीमा का उद्देश्य जमाखोरी पर अंकुश लगाना, चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना और कीमतों में स्थिरता लाना है। नई समय सीमा के अंतर्गत कोई भी व्यापारी चीनी के भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिन से अधिक समय तक नहीं रख सकता और देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता। सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया जा रहा है। बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेवर 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हित के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत बेल्जियम के बीच आपसी साझेदारी को सुदृढ़ करने का महत्वपूर्ण अवसर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, डीटीएच, डीआरए और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं नींबू वर्गीय पौधे लगाए विषय पर कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी दे रहे हैं दिनेश कुमार सिंह।
2: किसान भाइयों, आज हम नींबू वर्गीय फलों की बागवानी के बारे में चर्चा करेंगे। नींबू वर्गीय फलों में माल्टा, संतरा, कागजी नींबू, लेमन और ग्रेपफ्रूट आते हैं। इन फलों के सफल उत्पादन के लिए दोमट व बलुई दोमट मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त होती है। इन फलों की सफल बागवानी के लिए नीचे की मिट्टी की बनावट और गहराई विशेष महत्व रखती है। नीचे कंकड़ की तह नहीं होनी चाहिए तथा भूमि का जल स्तर नीचा होना चाहिए, जिससे उचित जल निकास हो सके। यदि मिट्टी में चूने की मात्रा ज़्यादा हो तो इससे पौधे की बढ़वार ज़्यादा होती है। अब बात आती है पौध तैयार करने की। नींबू वंश के पौधे तैयार करने की सबसे प्रचलित विधि चश्मा चढ़ाना है, जिसमें टी आकार के चश्मे की सफलता सबसे अधिक होती है, जिसे बसंत ऋतु में या जुलाई अगस्त माह यानी इस समय एक वर्ष पुराने बीजू पौधे पर मनपसंद किस्म की गोल स्वस्थ आँख, जिसे कली कहते हैं, चढ़ाकर पौध तैयार की जाती है। जब पौध तैयार हो जाती है तो उसको लगाने के लिए पहले खेत को भली भांति जोत कर तैयार कर लेते हैं। इससे खेत में कोई खरपतवार न रहे और जमीन समतल हो जाए। बाग लगाने का सर्वोत्तम समय बरसात का मौसम है, अतः आप पहले तैयार की गई भूमि पर रेखांकन करें। लाइन से लाइन और पौधे से पौधे की दूरी दोनों 6 मीटर रखते हैं। रेखांकन कर लेने के बाद 1 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा खोद लेते हैं। गड्ढा खोदते समय ऊपर की आधी मिट्टी को एक तरफ तथा नीचे की आधी मिट्टी को दूसरी तरफ रखते हैं। फिर गड्ढे की भराई करते हैं। ऊपर की मिट्टी 20 से 25 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, लगभग 70 ग्राम लिंडेन चूर्ण मिलाकर गड्ढे को इस प्रकार भर देते हैं कि गड्ढे के ऊपर तक मिट्टी उठी रहे। फिर उसमें पानी दे देते हैं, जिससे मिट्टी अच्छी तरह बैठ जाए। इसके बाद पौधे की रोपाई करते हैं। रोपाई करते समय भी कुछ बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। पौधा ऐसे समय लगाना चाहिए जब न ज़्यादा गर्मी, न ज़्यादा बरसात और न ज़्यादा ठंडक हो। पौधा गड्ढे में उतनी ही गहराई पर लगाना चाहिए जितना गहराई पर वह पौधशाला में था, तथा चश्मा किया हुआ स्थान जमीन से ऊपर होना चाहिए। पौधा लगाने के बाद जड़ों के आसपास की मिट्टी खूब अच्छी तरह दबा देनी चाहिए तथा पौधा लगाने के तुरंत बाद पानी दे देना चाहिए। फिर पौधे की देखभाल करते रहना चाहिए। जब पौधा 1 साल का हो जाए तो उसमें खाद एवं उर्वरक देने की आवश्यकता पड़ती है। नींबू वर्गीय पौधे रोपने के बाद उसे सही प्रकार देने की भी आवश्यकता होती है।

0: इसकी छटाई इस प्रकार करनी चाहिए कि जमीन से 1.5 से 2 फीट की ऊंचाई तक कोई शाखा न रहे। फिर इस ऊंचाई के ऊपर समान दूरी पर 3-4 शाखाओं का चुनाव करें जो चारों दिशाओं में विकसित हों। अन्य शाखाओं को काटकर निकाल देना चाहिए। जो शाखाएं एक दूसरे के ऊपर बढ़ रही हों, रोगग्रस्त हों या अन्य किसी कारण से सूख गई हों, उन्हें भी काटकर हटा देना चाहिए। इसके बाद कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की 3 ग्राम मात्रा प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर छिड़काव करना। जब पौधा 1 साल का हो जाता है तो 10 किलोग्राम सड़ी हुई गोबर की खाद, 220 ग्राम यूरिया, 312 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और लगभग 167 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पेड़ के हिसाब से आवश्यकता पड़ती है। इस मात्रा को 2 बराबर भागों में बांट करके आधी मात्रा फरवरी माह में और आधी मात्रा सितंबर के महीने में देना चाहिए। फिर दूसरे साल इस मात्रा का 2 गुना मात्रा प्रयोग करते हैं। तीसरे साल मात्रा बढ़ाते जाते हैं और 10 साल तक 1 साल के पौधे को जितना उर्वरक देते हैं उसकी 10 गुना मात्रा प्रयोग करते हैं। इन पौधों के लिए सिंचाई का उचित प्रबंध भी आवश्यक है। गर्मियों के दिन में 10 से 15 दिन के अंतर पर तथा जाड़ों में 4-5 सिंचाई आवश्यक है। वर्षा ऋतु में आमतौर पर सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, फूल निकलते समय सिंचाई नहीं करनी चाहिए वरना फूल झड़ जाते हैं। तो इस तरह से इन सब बातों को ध्यान में रखकर नींबू वर्गीय वृक्ष लगाने चाहिए।
1: अभी आप सुन रहे थे नींबू वर्गीय पौधे लगाए विषय पर कार्यक्रम खेती की बातें। जानकारी दे रहे थे दिनेश कुमार सिंह। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

ईश्वर के हर फैसले में हमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर हमें वो नहीं देता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है।

हमारी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वो ना मिले, फिर भी हमारे लिए दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया निकले।

0: अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना, जिसमें आज के कलाकार थे अनुराधा पौडवाल, महेंद्र कपूर, चित्रा सिंह और निर्मला कुमारी। आराधना कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विचार बिंदु।
1: हमारे प्राचीन ऋषि मुनि आरण्यक जीवन बिताकर कंदमूल खाकर भी संतुष्ट और सुखी जीवन बिताते थे और धरती पर स्वर्गीय अनुभूति में मगन रहते थे। एक और आज का मानव है जो पर्याप्त सुख सुविधा, समृद्धि, ऐश्वर्य और वैज्ञानिक साधनों से युक्त जीवन बिताकर भी अधिक क्लेश, अशांति, दुख और उद्विग्नता से परेशान है। ये मनुष्य के विचार चिंतन का ही परिणाम है। एक बड़े अंग्रेजी लेखक अपने जन्मदिन पर काले कपड़े पहनते और कहते कि विसंगतियों से भरा यह जीवन व्यर्थ है। इसके विपरीत नेत्रहीन प्रसिद्ध कवि मिल्टन कहा करते थे, भगवान का शुक्रिया है जिसने मुझे जीने का ये अमूल्य वरदान दिया। नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने अंतिम दिनों में कहा था, अफसोस है कि मैंने जीवन का एक सप्ताह भी सुख शांतिपूर्वक नहीं बिताया, जबकि उसे समृद्धि, ऐश्वर्य, संपत्ति, यश आदि की कोई कमी नहीं रही। सिकंदर महान को भी अपने जीवन के अंतिम दिन पश्चाताप में बिताने पड़े। जीवन में सुख शांति, प्रसन्नता और दुख, क्लेश, अशांति, पश्चाताप आदि का आधार मनुष्य के अपने विचार हैं, अन्य कोई नहीं। समृद्ध, ऐश्वर्य संपन्न जीवन में भी व्यक्ति गलत विचारों के कारण दुखी रहेगा और उत्कृष्ट विचारों से अभावग्रस्त जीवन में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का अनुभव करेगा। ये एक सुनिश्चित तथ्य है। संसार एक आईना है, इस पर हमारे विचारों की जैसी छाया पड़ेगी वैसा ही प्रतिबिंब दिखाई देगा। विचारों के आधार पर ही संसार हमें सुखमय अनुभव होता है। पुरोगामी उत्कृष्ट उत्तम विचार जीवन को ऊपर उठाते हैं, उन्नति, सफलता, महानता का पथ प्रशस्त करते हैं, तो हीन, निम्नगामी कुविचार जीवन को गिराते हैं। विचारों में अपार शक्ति है जो सदैव कर्म की प्रेरणा देती है। वो अच्छे कार्यों में लग जाए तो अच्छे और बुरे मार्ग की ओर प्रवृत्त हो जाए तो बुरे परिणाम प्राप्त होते हैं। विचारों में एक प्रकार की चेतना शक्ति होती है। किसी भी विचार में एक स्थान पर केंद्रित होते रहने पर उसकी सूक्ष्म चेतन शक्ति घनीभूत होती जाती है। प्रत्येक विचार आत्मा और बुद्धि के संसर्ग से पैदा होता है। बुद्धि उसका आकार प्रकार निर्धारित करती है तो आत्मा उसमें चेतना फूंकती है। इस तरह विचार अपने आप में एक सजीव किंतु सूक्ष्म तत्व है। मनुष्य के विचार एक तरह की सजीव तरंगे हैं जो जीवन, संसार और यहाँ के पदार्थों को प्रेरणा देती रहती हैं।

0: इन सजीव विचारों का जब केंद्रीयकरण हो जाता है तो एक प्रचंड शक्ति का उद्भव होता है। स्वामी विवेकानंद ने विचारों की इस शक्ति का उल्लेख करते हुए बताया है कि कोई व्यक्ति भले ही किसी गुफा में जाकर विचार करे और विचार करते करते ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो वे विचार कुछ समय उपरांत गुफा की दीवारों का विच्छेद कर बाहर निकल पड़ेंगे और सर्वत्र फैल जाएंगे। वे विचार तब सबको प्रभावित करेंगे। मनुष्य जैसे विचार करता है उनकी सूक्ष्म तरंगे विश्वाकाश में फैल जाती हैं। सम स्वभाव के पदार्थ एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। इस नियम के अनुसार उन विचारों के अनुकूल दूसरे विचार आकर्षित होते हैं और व्यक्ति को वैसे ही प्रेरणा देते हैं। एक ही तरह के विचार घनीभूत होते रहने पर प्रचंड शक्ति धारण कर लेते हैं और मनुष्य के जीवन में जादू की तरह प्रकाश डालते हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे विचार बिंदु, जिसका शीर्षक था सुख और दुख। आलेख और वाचन अरुण पांडे का था। ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, जिसका विषय है जन्मजात हृदय रोग कारण लक्षण व उपचार। विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर प्रतिभा राय।
2: 2000 पर लीटर अच्छे ऑयल जो होते हैं उनकी कॉस्ट 2000 पर लीटर 3000 पर लीटर भी होती है, जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो बेस्ट होगा आप जो भी ऑयल यूज करें ये कोशिश करें कि ऑयल का रीयूज नहीं होना चाहिए। एक बार ऑयल यूज किया जो बचा है उसको डिस्कार्ड मतलब फेंक देना चाहिए। मस्टर्ड ऑयल, घी, सब कुछ अच्छा है। इम्पॉर्टेंट चीज है ऑयल का रीयूज नहीं होना चाहिए और कोशिश करें कि कम से कम तेल में बने। और कोई भी चीज डीप फ्राइड होगी तो ज्यादा डैमेजिंग होती है। अगर आप एवरेज फ्राइड या बॉयल खा रहे हैं तो कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट मॉडरेट अमाउंट हमेशा ध्यान में रखना है कि कोई भी चीज मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए और शुगर इनटेक हमेशा लिमिटेड होना चाहिए। खाने के बारे में हमने पहले बोला शुगर लिमिटेड, मॉडरेट अमाउंट का घी बेटर है कहीं भी ज्यादा हायर अमाउंट ऑफ शुगर से। आप तीसरी चीज बात करेंगे तो कोशिश करें कि आप फ्रेश वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, डीप फ्राइड आइटम कम से कम करें। और ये जो लाइफस्टाइल है हमारी जिसमें आप एक्सरसाइज का टाइम फिक्स नहीं कर पाते तो ठीक है, रिकमेंडेड है मॉर्निंग बेटर है, कुछ जो स्टडीज है वो बोलती इवनिंग बेटर है। मेरा कहना है आपको जब भी टाइम मिले आप इन्वॉल्व होइए फिजिकल एक्टिविटीज में, कभी भी है वो हेल्थ के लिए नहीं करने से तो बेटर होता है। दूसरी चीज कोशिश करिए आपकी लास्ट मील जो है इवनिंग की 7 or 8 o'clock पे हो जाए। इमीडिएटली खाने के बाद सोना नहीं जाना चाहिए, थोड़ा वॉकिंग है तो बेस्ट है, अगर नहीं है तो फिर भी इमीडिएटली सोने ना जाए। और छोटी छोटी मील्स ज्यादा इम्पॉर्टेंट है। और ये कहना कि राइस से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है या चपाती ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज मॉडरेट अमाउंट में होनी चाहिए और हर एरिया का डाइट अलग है। आप बहुत सारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब में वीडियो देख के इमीडिएटली वो सब डाइट चालू नहीं करें। आपकी जो नेटिव इंडिजिनस डाइट है उसी को खाएं, उसी को सही से पकाएं, कम ऑयल का यूज करें, कम शुगर इंटेक करें तो आई थिंक वो बेस्ट है। जब भी हार्ट डिजीज या हृदय रोग के बारे में बात करते हैं तो आप ब्रॉडली क्लासीफाई करते हैं वो जो पैदा होने से बच्चे के साथ है जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज है बोलते हैं, और दूसरा होता है एक्वायर्ड हार्ट डिजीज जो विद टाइम बच्चे या बड़े को आती है उनकी गलत शैलियों के वजह से। सो आज का फोकस है कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। तो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के डाटा के हिसाब से हर 1000 पैदा हुए बच्चे में 8 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज होती है। इसको ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक वो डिजीज जिसमें बच्चा नीला पड़ता है और एक वो जिसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है। पैदा हुए एक दिन के बच्चे में भी ये नीलापन दिखता है और नहीं तो ज्यादातर 6 महीने से 1 साल के बीच में वो नीलापन दिखने लगता है। तो देखिए इसको दो पार्ट में आप बोल सकते हैं, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना मतलब डॉक्टर जो है स्टेथोस्कोप का यूज करके देखेगा, दूसरा बच्चे की इकोकार्डियोग्राफी जो मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट है इन सब डिजीजेस का, वो है इकोकार्डियोग्राफी जो एक ट्रेन बंदे से ही करवाना बेटर रहता है, नहीं तो बहुत सारी डायग्नोसिस मिस हो जाती है और बाद में पता लगती है। तो एक तो हमने आपको बताया बच्चा जिसमें नीला पड़ता है, अगर आपका बच्चा नीला नहीं पड़ रहा है और बच्चा अपनी एज के कंपेरिजन के बच्चों में आपको कमजोर दिखता है, बच्चे का वेट नहीं बढ़ता है और छोटे बच्चे अगर हैं 1 साल के नीचे तो माँ की कंप्लेन रहती है बच्चा दूध नहीं पीता है या पी के बीच में छोड़ देता है, या तो बच्चे के माथे पे पसीना आता है दूध पीते समय, या बच्चे को निमोनिया हो रहा है, या बच्चा आपको सुस्त दिखता है। अगर ये सब कोई भी सिम्टम आपको लगते हैं तो आपको जरूर से इवेल्युएट करवा लेना चाहिए अपने पीडियाट्रिशियन और कार्डियोलॉजिस्ट से। देखिए जो हमने इकोकार्डियोग्राफी की बात की तो आजकल

0: कॉन्सेप्ट है फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जिसमें 18 से 22 सप्ताह के बीच में मां के पेट के अंदर बच्चे के हार्ट की जांच की जाती है। बट उसके स्पेसिफिक इंडिकेशंस है, वो सारे लोगों में प्रिस्क्राइब नहीं होता है। ऑब्स गायनी के हिसाब से अगर उन्हें कुछ प्रॉब्लम लगती है तो वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास फीटल इको करने के लिए भेजते हैं। बट आप ब्रॉडली देखेंगे तो अगर मदर को डायबिटीज है या कोई फैमिली में आपकी कंजेनाइटल हार्ट डिजीज की हिस्ट्री रही हो, या तो आजकल आईवीएफ से जो बेबीज होते हैं वो प्रेशियस प्रेगनेंसी होती है, उन सब कंडीशन में हम ज्यादातर बोलते हैं कि हर पेरेंट को 18 to 22 weeks के बीच में फीटल इको करवा लेना चाहिए। फीटल इको बहुत डेफिनेटिव टेस्ट नहीं है, बट सारी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन, मतलब जो इमीडिएटली डिलीवरी के बाद बच्चे की जान जाने वाली जो भी बीमारियां हैं, वो ज्यादातर टाइम पता लग जाती हैं।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, विषय था जन्मजात रोग, जन्मजात हृदय रोग, कारण, लक्षण व उपचार के उपाय। विशेषज्ञ थी डॉक्टर प्रतिभा राय। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ।

भरत को श्री रामचंद्र के प्रेम की प्रतिमूर्ति मान सभी अयोध्यावासी उनके साथ राम को लौटा लाने के लिए वन जाने को उद्यत हैं। मंत्रियों को आदेश दिया गया है कि वे राज तिलक की सारी सामग्री वन में ले चलें, जहां वशिष्ठ जी श्री राम का राज तिलक करेंगे। सबसे आगे अरुंधति तथा अग्निहोत्र की सामग्री के साथ मुनि वशिष्ठ रथ पर सवार होकर चले। उनके पीछे तेज और तपस्या के धनी ब्राह्मणों के दल अनेक सवारियों पर आसीन हैं। नगर के नर नारियों के सुसज्जित रथों के साथ हैं रानियों की पालकियां। सबको विदा करके भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई पैदल चल पड़े तो माता कौशल्या ने भरत को बुलाकर उनकी बलैया ली और उनसे रथ पर सवार होने को कहा। दोनों भाइयों ने माता की आज्ञा सिर पर धारण की।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस से संगीतमय पाठ, जिसमें आज के कलाकार थे ए हरिहरन और वाणी जयराम। मीडियम वेब के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 6:50 और 28 सेकंड हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में आज आप सुनेंगे वायलिन वादन रात 10:30 पर, कलाकार होंगी विदुषी एन राजम। दोपहर 12:45 पर कलाकार होंगे शत्रुघ्न बेउरा और सुबह 7:31 पर गायन कलाकार होंगे विदुषी ईश्वरी अमोनकर। कार्यक्रम सुगम संगीत में आप सुनेंगे गजल रात 8:00, कलाकार होंगे पलाश चंद्र विश्वास और दोपहर 12:30 पर भजन कलाकार होंगी पूनम शर्मा। कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनेंगे सुबह 9:50 पर और दोपहर 1:45 पर कलाकार होंगी महुआ बनर्जी। इन्हीं के गाए लोक गीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम कृषि जगत के अंतर्गत शाम 6:30 पर। किसान भाई सुन सकेंगे अपना कार्यक्रम कृषि जगत शाम 6:30 पर, जिसका विषय होगा परंपरागत कृषि विकास योजना। इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे खेती के आधुनिक औजार और उनका प्रबंधन विषय पर डॉक्टर आयुष से शिखा श्रीवास्तव की बातचीत। कार्यक्रम युवाणी का प्रसारण समय होगा शाम 5:15 पर, जिसके अंतर्गत वे सुनेंगे आज की बात, यूथ डायरी, इतिहास में आज का दिन, रोजगार सूचना और हिंदी के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका विषय पर मार्गदर्शन। विशेषज्ञ होंगे डॉक्टर विवेक सिंह। महिलाएं सुन सकेंगी अपना कार्यक्रम गृहलक्ष्मी दोपहर 1:15 पर। फिल्मी गीत आप सुन सकेंगे कार्यक्रम रसमाधुरी में रात 8:15 पर, कार्यक्रम रसरंग में शाम 7:31 पर, फिल्म संगीत शाम 6:10 पर, शाम 5:00, कुछ बातें कुछ गीत दोपहर 2:30 पर और झनकार सुबह 10:00। हिंदी का वैभव और नागरी प्रचारणी सभा विषय पर रूपक आप सुनेंगे रात 10:00 और अंग्रेजी कार्यक्रम शाम 7:00। गैर फिल्मी गीत और गजलों का कार्यक्रम अंजुमन आप सुन सकेंगे रात 9:30 पर और ईमेल पर आधारित फरमाइशी गीत एक्सप्रेस सुबह 11:00 से। सदाबहार फिल्मी गाने आप सुन सकेंगे कार्यक्रम मधुरिमा में सुबह 8:45 पर और गुड मॉर्निंग बनारस अब से थोड़ी ही देर में सुबह 7:00। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आपको एक बार फिर से बता दें, कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में आप सुनेंगे वायलिन वादन रात 10:30 पर, कलाकार होंगे विदुषी एन राजम। दोपहर 12:45 पर कलाकार होंगे शत्रुघ्न बेउरा और सुबह 7:31 पर गायन कलाकार होंगी विदुषी किशोरी अमोनकर। श्रोताओं, कार्यक्रम विवरण अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30। इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है पीसी

0: की समस्या और इसका समाधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 3 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो हमें फोन करना ना भूले। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र। आइए सुनते हैं संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शंघाई सहयोग संघटनस्य सदस्य देशानां आह्वानं कृतवान् यत् आतंकवादस्य वित्तपोषणं आतंकवादीनां संघटने प्रवेशः उग्रवादस्य प्रसारः आतंकवादीनां सुरक्षिताश्रयस्थलानि च समाविष्टं संपूर्णं तन्त्रं उन्मूलयेत्। ह्यः बिश्केक नगरे आयोजितं शंघाई सहयोग संघटनस्य 26वें शिखर सम्मेलनं संबोधयन् प्रधानमंत्री उक्तवान् यत् आतंकवादस्य विषये द्विविधवान् मानदण्डानां किमपि स्थानं न भवितुमर्हति। विदेश मंत्रालयस्य पश्चिम विभागस्य सचिवः सीवी जॉर्ज वार्ताहर सम्मेलने अवदत् यत् प्रधानमंत्री विश्वस्य विभिन्नेषु भागेषु प्रवर्तमानानां संघर्षाणां विषये चिन्तां प्रकटितवान्। सदस्य देशानां नेतारः संघटनस्य 25वें वर्षपूर्ति अवसरे बिश्केक घोषणापत्रे हस्ताक्षरम् अपि कृतवन्तः। शिखर सम्मेलनस्य समापनम् आतंकवाद प्रतिरोधः ऊर्जा आपद्व्यवस्थापनम् अंकीय सहकारिता चेति विषयान् समाविश्य 13 प्रमुख परिणामैः सह अभवत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां जलशक्ति मंत्रालयस्य विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रं संबोधयिष्यति। ह्यः प्रारब्धमिदं द्विदिवसीयं विभागीय शिखर सम्मेलनं प्रधानमंत्रिणा टीम इंडिया इत्यस्य भावनां सुदृढीकर्तुं सहकारात्मक संघवादं च अधिकं सुदृढीकर्तुं परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां श्रृंखलायाः प्रथमं सम्मेलनमस्ति। अस्मिन् शिखर सम्मेलने केन्द्र राज्य प्रशासनानि महत्वपूर्णानां क्षेत्रीय प्राथमिकतानां विषये विचार विमर्शं करिष्यन्ति अथ समयबद्धाः कार्ययोजनाः च निर्मास्यन्ति। शिखर सम्मेलने चतुर्षु प्रमुख क्षेत्रेषु विशेषं ध्यानं दीयते। तेषु जलसंरचना परियोजनानां समयबद्धं कार्यान्वयनं जलसंचय जनभागीदारी कैच द रेन इत्येतत् पेयजल स्रोतसां स्थायित्वं जल जीवनोपक्रमः च सम्मिलिताः सन्ति। उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन् अद्य छत्तीसगढ़े रायपुरस्य यात्रां करिष्यति। स्वीय यात्रावधौ उपराष्ट्रपतिः रायपुरस्य अखिल भारतीयायुर्विज्ञान संस्थानस्य तृतीये दीक्षांत समारोहे भागं ग्रहीष्यति। बेल्जियम देशस्य प्रधानमंत्री बा डी वेबर अद्यारभ्य भारतस्य त्रिदिवसीय यात्रायां भविष्यति। यात्रावधौ सः प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना सह द्वैपाक्षिक सम्बन्धानां समग्र परिदृश्यस्य परस्पर हित सम्बद्धानां क्षेत्रीय वैश्विक विषयाणां च विषये द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति। प्रधानमंत्री डी वेवर भारत यूरोपीय संघयोः मुक्त वाणिज्य सन्धेः सन्दर्भे आयोजितं व्यावसायिक कार्यक्रममपि संबोधयिष्यति। सः मुंबई नगरमपि गमिष्यति यत्र हीरक क्षेत्रस्य पत्तन व्यवस्थायाः परिवहन आपूर्ति व्यवस्थायाश्च प्रतिनिधिभिः सह विचार विनिमयं करिष्यति। विदेश मंत्रालयस्य अनुसारं एषा यात्रा भारत बेल्जियम देशयोः सहभागितां सुदृढीकर्तुं महत्वपूर्णमवसरं प्रदास्यति। सममेव व्यापार विनियोगयोः रक्षायाः सुरक्षायाश्च प्रौद्योगिक्याः नवीकरणीयोर्जायाः सम्पर्कस्य अथ

0: प्रतिजनसम्बन्धानां च क्षेत्रेषु पारस्परिकहितस्य सहयोगमपि वर्धिष्यते। नेपालस्य प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उक्तवान् यत् गतसप्ताहे तिब्बत क्षेत्रात् भोटेकोशी नद्याः मार्गेण रसुवा प्रदेशं प्रविष्टः विनाशकारी जलाप्लावः वायुमण्डल परिवर्तनस्य परिणामः अस्ति। नेपालदेशे सहसा आगतस्य विनाशकारिणः जलाप्लावस्य कारणेन मृतानां संख्या 50,000+ पर्यन्तं वर्धिता अस्ति। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज पर आप हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ। सुबह के 7 बज रहे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: वेरी गुड मॉर्निंग बनारस। मैं कीर्तिका लेकर आ गई हूँ आपका फेवरेट मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग बनारस। तो दोस्तों, देखते ही देखते सितंबर का महीना आ चुका है और इसी के साथ साल का 2/3 हिस्सा मानो पलक झपकते ही निकल गया और अब बचे हैं आखिर के 3 महीने। और ये 3 महीने तो और भी जल्दी निकलने वाले हैं क्योंकि अब शुरू होने वाला है त्योहारों का पूरा सीजन। अब आने वाली है जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, दिवाली, छठ पूजा और फिर आखिर में क्रिसमस की घंटियां भी बज उठेंगी। यानी दोस्तों, अब जो भी दिन आने वाले हैं वो पूरे मस्ती, रौनक और त्योहारों से लबालब भरे होने वाले हैं। तो इसी रौनक भरी शुरुआत में आज के दिन भी कुछ खास है। आज है वर्ल्ड कोकोनट डे। जी हाँ, हर साल 2 सितंबर को दुनिया भर में वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला नारियल का भी कोई डे होता है? तो बिल्कुल होता है। ये दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी यानी ICC की स्थापना की याद में, जो 2009 में बनी थी। इस दिन का मकसद है नारियल के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाना और कोकोनट इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। तो चलिए आज हम बात करते हैं इस छोटे से दिखने वाले लेकिन बड़े काम के फल के बारे में, जिसे कहा जाता है ट्री ऑफ लाइफ। और नारियल पेड़ को यूं ही ट्री ऑफ लाइफ नहीं कहा जाता। इसकी वजह है कि इस एक पेड़ से हमें इतना कुछ मिलता है कि कुछ भी बेकार नहीं जाता। इसका हर हिस्सा किसी न किसी काम आता है। छिलका ईंधन के काम आता है, रेशा रस्सी और चटाई बनाने के इस्तेमाल होता है, और अंदर का पानी और गूदा तो है ही सेहत का खजाना। तो सबसे पहले बात करते हैं सेहत की। तो नारियल में मिलते हैं हेल्दी फैट्स, डाइट्री फाइबर्स और मिनरल्स जैसे मैग्नीशियम और पोटेशियम। इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। और दोस्तों, नारियल पानी को तो कहा ही जाता है नेचर्स ड्रिंक, क्योंकि इसमें नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और कई बार जब किसी को डेंगू जैसी बीमारी होती है तो डॉक्टर भी नारियल पानी पीने की सलाह देते हैं, क्योंकि ये शरीर को हाइड्रेटेड रखता है और जल्दी एनर्जी देता है। तो ये तो थी नारियल के सेहत के फायदे की बात, और अब बात करते हैं इसके धार्मिक महत्व के बारे में। हम सभी जानते हैं कि भारत में कोई भी पूजा, कोई भी शुभ काम, जैसे गृह प्रवेश हो, शादी हो, नई दुकान की शुरुआत हो या कोई भी नया काम, बिना नारियल के पूरा ही नहीं होता। तो आखिर नारियल को ही क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इसके पीछे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग मान्यता है। माना जाता है कि दुनिया का हर फल किसी बीज से पैदा होता है और वो बीज तभी बाहर आता है जब कोई उसे फल को खाता है। यानी एक तरह से हर फल जूठा होकर ही अगली पीढ़ी को जन्म देता है। लेकिन दोस्तों, इस नियम का अपवाद है सिर्फ 2 फल, नारियल और केला। इन दोनों फल को उगाने के लिए किसी को खाने या जूठा करने की जरूरत नहीं पड़ती। यही वजह है कि नारियल और केला भगवान को चढ़ाने के लिए सबसे पवित्र और सबसे खास भोग माने जाते हैं। इसीलिए दोस्तों, हमारी

हर पूजा में नारियल का होना लगभग अनिवार्य ही माना जाता है और शायद इसीलिए नारियल को श्री फल भी कहा जाता है, यानी शुभ फल। भारत में नारियल को शुद्धता और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसका कठोर बाहरी खोल दर्शाता है भौतिक संसार यानी माया को, जबकि अंदर का सफेद गूदा दर्शाता है हमारी आत्मा की शुद्धता और आध्यात्मिक तत्व को। इसलिए जब पूजा में नारियल फोड़ा जाता है तो इसका एक गहरा प्रतीकात्मक अर्थ होता है। कठोर बाहरी खोल का टूटना दर्शाता है भक्त के अंदर के अहंकार और भौतिक मोह माया के टूटने को, और अंदर से निकलने वाला शुद्ध सफेद गूदा भगवान को अर्पित किया जाता है, जो दर्शाता है भक्त की आंतरिक पवित्रता और उसका पूर्ण समर्पण भाव। तो दोस्तों, एक दिलचस्प मान्यता नारियल को लेके और भी है। नारियल में जो तीन आंखें होती है वो प्रतीक मानी जाती हैं त्रिमूर्ति की, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों आंखें सृष्टि, पालन और संहार के तीन रूपों को दर्शाती है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तो नारियल को देवताओं का निमंत्रण माना जाता है। जब घर में नारियल चढ़ाया जाता है तो माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि सेहत का आगमन होता है। अब दोस्तों, थोड़ी बात करते हैं एग्रीकल्चर और इकोनॉमिक पहलू की भी। भारत नारियल उत्पादन के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देशों में गिना जाता है। केरलम, तमिलनाडु, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य नारियल की खेती के प्रमुख केंद्र हैं। नारियल की खेती लाखों किसानों की आजीविका का जरिया है और आने वाले समय में इसकी डिमांड और भी बढ़ने की उम्मीद है। चाहे वो कोकोनट ऑयल हो, कोकोनट मिल्क हो या फिर हेल्थ और ब्यूटी इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि ये छोटा सा दिखने वाला फल हमारी सेहत, हमारी आस्था और हमारी अर्थव्यवस्था तीनों से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है। तो इस वर्ल्ड कोकोनट डे पर आप भी अपने डाइट में नारियल को शामिल कीजिए और इसके गुणों का फायदा उठाइए। इसी के साथ चलते हैं कार्यक्रम के नेक्स्ट सेगमेंट में और जान लेते हैं देश और दुनिया का हाल समाचार। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिप्लोमेटिक खबर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में उज्बेकिस्तान और किर्गिज रिपब्लिक के स्टेट विजिट से लौटे हैं, जो 29 अगस्त से 1 सितंबर तक चली। इस दौरे में एक बेहद खास पल भी आया। उज्बेकिस्तान ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक ओली दराजली दोस्तलिक ऑर्डर से सम्मानित किया। ये सम्मान भारत और उज्बेकिस्तान के बीच गहरे होते रिश्तों को दर्शाता है और दोनों देशों की मजबूत होती स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप को दर्शाता है। पीएम मोदी की ये यात्रा भारत की सेंट्रल एशिया के साथ बढ़ती कूटनीतिक नजदीकियों की एक और मिसाल बनकर सामने आई है। 1 सितंबर से विदेश यात्रा करने वालों के लिए एयरपोर्ट पर नया नियम लागू हो गया है। अब इमिग्रेशन काउंटर पर बोर्डिंग पास पर स्टैंप लगाने का काम पूरी तरह बंद कर दिया गया है। यानी अब यात्री अपने मोबाइल में सेव ई बोर्डिंग पास दिखाकर ही इमिग्रेशन प्रोसेस पूरा कर सकेंगे। प्रिंट निकलवाना जरूरी नहीं होगा। हालांकि जो लोग प्रिंटेड बोर्डिंग पास लाना चाहे वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस फर्क इतना है कि अब उस पर स्टैंप नहीं लगेगा। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन के मुताबिक इसका मकसद है यात्रा को आसान, तेज और ज्यादा डिजिटल बनाना, यानी कम पेपर, कम स्टेप्स और एक स्मूथ सफर का एक्सपीरियंस। इससे यात्रियों को पेपर डॉक्यूमेंट संभालने की झंझट भी कम होगी। और फुटबॉल की दुनिया से एक बड़ी खबर आ रही है। लियोनेल मेसी ने 39 साल की उम्र में अर्जेंटीना नेशनल टीम से इंटरनेशनल फुटबॉल को अलविदा कह दिया है। मेसी अर्जेंटीना के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले और सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बनकर रिटायर हुए हैं। पूरे 21 साल में उन्होंने 207 मैचों में 125 गोल दागे हैं। उनके करियर का सबसे यादगार पल था 2022 का वर्ल्ड कप जीतना। इसके अलावा 2021 और 2024 में कोपा अमेरिका ट्रॉफी भी उन्होंने अपने नाम की। ये फैसला 2026 वर्ल्ड कप फाइनल में स्पेन से मिली हार और उनके पिता व एजेंट जॉर्ज मेसी के निधन के कुछ ही हफ्तों बाद आया है। मेसी ने लिखा है कि ये अध्याय उन्हें गहरा दर्द देता है, लेकिन वो हमेशा नेशनल टीम की जर्सी से प्यार करते रहेंगे। हालांकि फुटबॉल क्लब में मेसी अभी एक्टिव रहेंगे। वो इंटर मायामी सीएफ के साथ 2028

तक कॉन्ट्रैक्ट में है, यानी मेसी को खेलते देखते रहना जारी है, बस अब अर्जेंटीना के जर्सी में नहीं। तो दोस्तों, ये था देश और दुनिया का हाल समाचार। और अब 2 सितंबर के इतिहास की बात करें तो आज ही के दिन यानी 2 सितंबर 2023 को भारत ने स्पेस के क्षेत्र में एक नया इतिहास रचा था, जब इसरो ने आदित्य L1 मिशन को सक्सेसफुली लॉन्च किया। ये भारत का पहला डेडिकेटेड सोलर ऑब्जर्वेटरी मिशन था, यानी इसे खास तौर पर सूरज का स्टडी करने के लिए भेजा गया। आदित्य L1 को पृथ्वी से करीब 15 लाख किलोमीटर दूर सूरज और पृथ्वी के बीच L1 पॉइंट यानी लैग्रेंज पॉइंट पर स्थापित किया गया है, जहां से ये बिना किसी रुकावट के लगातार सूरज पर नजर रखता है, सोलर फ्लेयर, सोलर विंड्स और सूरज की सतह पर होने वाली गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए। ये मिशन चंद्रयान 3 और ऐतिहासिक सफलता के कुछ ही दिनों बाद लॉन्च हुआ था, यानी उस साल स्पेस सेक्टर में भारत के लिए लगातार बड़ी उपलब्धियों का दौर रहा। इस लॉन्च के साथ भारत सूरज का अध्ययन करने वाले चुनिंदा देशों के लिस्ट में शामिल हो गया। आज ही के दिन 2 सितंबर 1999 को भारतीय तैराक बुला चौधरी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की थी। वो इंग्लिश चैनल को 2 बार पार करने वाली पहली एशियाई महिला बनी। ये उपलब्धि उन्हें भारत की सबसे प्रेरणादायक लॉन्ग डिस्टेंस स्विमर्स में गिनती है। और आज ही के दिन 1945 में दूसरे विश्व युद्ध का औपचारिक अंत हुआ था। जापान ने अमेरिकी युद्धपोत USS मिसूरी पर सरेंडर डॉक्यूमेंट यानी आत्मसमर्पण के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, जो टोक्यो बे में खड़ा था। ये वो पल था जब 6 साल तक चली दुनिया की सबसे विनाशकारी जंग आखिरकार खत्म हुई, जिसमें करोड़ों लोगों की जान गई। जापान के सरेंडर के साथ ही दूसरे विश्व युद्ध का ये आखिरी अध्याय बंद हुआ और इसके बाद दुनिया के भू राजनीतिक ढांचे में एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, जिसने आने वाले दशकों की दिशा तय की। तो दोस्तों, इसी के साथ आज के गुड मॉर्निंग बनारस में बस इतना ही। आज हमने बात की वर्ल्ड कोकोनट डे की, जानी कुछ दिलचस्प खबरें और घूम आए इतिहास के पन्नों में भी। और जाते जाते एक बात कहना चाहूंगी, जिंदगी बड़ी चीजों से पहले छोटी छोटी खुशियों को महसूस करना सीखे, क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियां ही मिलकर एक बड़ी और खूबसूरत जिंदगी बनाती हैं। आप सबका दिन शानदार हो, हर लक्ष्य आसान हो। फिर मिलेंगे एक नई सुबह के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और गुड मॉर्निंग बनारस।

0: गुड मॉर्निंग बनारस।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गुड मॉर्निंग बनारस, और अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हम रिले करेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।

0: हमेशा अपनी रूढ़िवादिता को बरकरार रखने की कोशिश करता है, वह खुद को गलत स्थिति में पहुंचा देता है। महात्मा गांधी।
1: मानव का दानव होना उसकी हार है, मानव का महामानव होना उसका चमत्कार है, और मनुष्य का मानव होना उसकी जीत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन।
0: कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और ना ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकता है क्योंकि कोई उसे नहीं देख रहा है। महात्मा गांधी।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर इस अभियान को जन भागीदारी से व्यापक बनाने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एमएसएमई अवार्ड समारोह में लिया हिस्सा, कहा विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है एमएसएमई सेक्टर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का दिया आदेश। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में सेवा संकल्प अभियान की कार्ययोजना को लेकर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। यह अभियान प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 25 वर्षों के निरंतर सेवा काल की जन कल्याणकारी उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना है। इसके जरिए प्रत्येक नागरिक को विकसित भारत 2047 के सामूहिक राष्ट्रीय संकल्प से जोड़ने की कोशिश होगी। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवा संकल्प अभियान को जन भागीदारी का व्यापक अभियान बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अभियान के प्रभावी संचालन के लिए शासन, मुख्यमंत्री कार्यालय और जनपद स्तर पर समन्वय की स्पष्ट व्यवस्था होनी चाहिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से आयोजित एमएसएमई अवार्ड समारोह में हिस्सा लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि एमएसएमई विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है।
3: विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में कोई सच्चाई को नकार नहीं सकता है कि एमएसएमई की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। विकसित भारत का अर्थ केवल आर्थिक रूप से मजबूत भारत ही नहीं होता है, बल्कि ऐसा भारत है जो मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबली कम्पिटिटिव, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में अग्रणी हो, युवाओं के लिए पर्याप्त रोजगार के अवसर पैदा करे और अपनी स्ट्रेटेजी तथा इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज में भी वो आत्मनिर्भर।
2: कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की प्रगति की समीक्षा की। श्री चौहान ने नतीजों पर आधारित निगरानी और किसानों तक समय पर लाभ पहुंचाने पर बल दिया।
4: योजना के 6 लक्ष्यों के आधार पर 100 जिलों का औसत स्कोर अप्रैल 2026 में 22.54 से बढ़कर जुलाई 2026 में 38.85 हो गया, जो 16.31 अंकों के सुधार को दर्शाता है। यह योजना 11 मंत्रालयों और विभागों की 36 केंद्रीय योजनाओं के साथ साथ राज्य की योजनाओं और निजी क्षेत्र की भागीदारी को मिलाकर लागू की जा रही है। वार्षिक लक्ष्यों के सापेक्ष प्रगति की निगरानी के लिए 36 योजना में कुल 121 संकेतक निर्धारित किए गए हैं। समीक्षा में निगरानी ढांचे को मजबूत करने पर जोर दिया गया। शिवांग मिश्रा।

0: गुप्ता के साथ नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: रेलवे ने उत्तरी रेलवे के मुरादाबाद संभाग के शेष 712 किलोमीटर रेल मार्ग पर कवच योजना के चौथे संस्करण के लिए 170 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। रेल मंत्रालय ने कहा कि इससे रेलवे सुरक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी। कवच परिचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन प्रणाली है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। सर्वोच्च न्यायालय ने 20 से 25 जुलाई के बीच देश भर में नीट पेपर लीक मुद्दे पर छात्र प्रदर्शनों से जुड़ी सभी प्राथमिकी को रद्द करने और इन मामलों में आगे जांच नहीं करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने केंद्र सरकार सहित 5 राज्यों की ओर से दायर याचिकाओं में बताई गई प्राथमिकियां भी रद्द कर दी और राज्यों को कोई नई प्राथमिकी दर्ज नहीं करने को कहा है। हालांकि न्यायालय ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन में शामिल संगीन आपराधिक मामले वाले 2873 लोगों के खिलाफ जांच जारी रखने की अनुमति दी है। इस बीच केंद्र सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी CJP के प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को रद्द करने की घोषणा का स्वागत किया है। नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता युवाओं की प्रगति और विकास है।
2: हमने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए आश्वासन दिया था कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज किए गए मामले वापस लिए जाएंगे। उसी क्रम में हमने भारतीय जनता पार्टी शासित प्रदेशों में जो सरकारें थी उनसे भी चर्चा की थी और हम उस आश्वासन को पूरा करने जा रहे हैं। CJP के प्रवक्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 5 सितंबर को प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को वापस लेने का जो निर्णय लिया है हम उसका स्वागत करते हैं।
1: चीनी की जमाखोरी और सट्टेबाजी रोकने के लिए केंद्र सरकार ने चीनी के भंडारण की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। साथ ही देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने सुरक्षित भंडार से प्याज बाजार में भेजना शुरू कर दिया है।
3: चीनी के भंडारण की नई सीमा इसी महीने की 15 तारीख से 30 नवंबर तक लागू रहेगी। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अनुसार संशोधित नियमों के तहत कोई भी व्यापारी स्टॉक मिलने के 30 दिनों से अधिक समय तक तय सीमा से अधिक चीनी अपने पास नहीं रख सकेगा। सरकार ने भरोसा दिया है कि इस फैसले से बाजार में चीनी की कमी नहीं होगी और कीमतें काबू में रहेंगी। उधर प्याज की बढ़ती कीमतों को नियंत्रित रखने के लिए नासिक से भेजी गई पहली कांदा एक्सप्रेस 450 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली चुकी है, जिसे दिल्ली NCR, वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़ और अमृतसर में वितरित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि बाजार में प्याज आते ही कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है और आने वाले दिनों में दाम और कम होंगे। रेल मार्ग से प्याज की सुरक्षित आपूर्ति के लिए भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
1: हरियाणा के पलवल जिले में कल हुई एक सड़क दुर्घटना में मैनपुरी के लोगों की मृत्यु का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लिया है। पलवल में KMP एक्सप्रेसवे पर कल सुबह एक पिकअप सड़क के किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया। इस दुर्घटना में पिकअप में सवार 6 लोगों की मौत हो गई जबकि 16 लोग घायल हो गए। यह लोग राजस्थान के खाटू श्याम बालाजी दर्शन के बाद मथुरा के वृंदावन आ रहे थे। रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
4: प्रदेश में बारिश से होने वाली जनहानि, पशुहानि और आर्थिक हानि को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी वरिष्ठ अधिकारियों को फील्ड पर निकलने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने वर्षा, आकाशीय बिजली से हुए नुकसान का आकलन कर 2 से 4 घंटे में मुआवजा देने के निर्देश भी दिए हैं। प्रदेश सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों तक भोजन, राहत सामग्री और जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के साथ ही लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम जारी है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 549 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं और 248 मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। इसके अलावा लोगों को सुरक्षित निकालने और जरूरतमंदों तक राहत पहुंचाने के लिए 552 नाव और मोटरबोट का इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावितों के लिए 312

0: राहत शिविर स्थापित किए गए हैं। इन राहत शिविरों में करीब 1700 लोग रह रहे हैं। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
1: इस बीच मौसम विभाग ने दो दिनों में प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश भर में 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाया जाएगा सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर इस अभियान को जन भागीदारी से व्यापक बनाने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एमएसएमई अवार्ड समारोह में लिया हिस्सा। कहा, विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है एमएसएमई सेक्टर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द कर

0: अक्टूबर तक चलाया जाएगा सेवा संकल्प अभियान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक कर इस अभियान को जन भागीदारी से व्यापक बनाने के दिए निर्देश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ग्रेटर नोएडा में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के एमएसएमई अवार्ड समारोह में लिया हिस्सा, कहा विकसित भारत के निर्माण की आधारशिला है एमएसएमई सेक्टर। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट पेपर लीक मामले में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर प्राथमिकी रद्द करने का दिया आदेश। और रुक रुक कर हो रही बारिश और बैराजों से पानी छोड़े जाने के कारण राज्य के 19 जिले बाढ़ से प्रभावित, राहत और बचाव कार्य जारी। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
2: यदि युवा को है रोजगार पाना तो होगा उसे कौशल बढ़ाना। अपने कौशल का विकास कीजिए, अपने भविष्य को संवारिए। वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें। बड़े बुजुर्गों की करे मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत। जो सिखाए हमें व्यवहारिक ज्ञान, करें ज्येष्ठ लोगों का सम्मान।
1: असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
3: दो सौ 41.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज। डीटीएच, डीआरएम और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। आइए सुनते हैं गायन। कलाकार हैं विदुषी किशोरी आमोनकर, राग है अहिर भैरव।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत में गायन। कलाकार थी विदुषी किशोरी आमोनकर। राग था अहिर भैरव। हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं समाचार दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत ताज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी के भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मोज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फॉरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों के पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर्स सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर लोगों से स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने, सोने की अनावश्यक खरीद और विदेशों में शादी ब्याह करने से बचने का आह्वान किया है। एक वीडियो संदेश में श्री

0: मोदी ने कहा कि देश के युवा आज जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं उससे उनके सपने साकार होंगे।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: श्री मोदी ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता, युद्धों, संकटों और आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधाओं के बावजूद भारत तीव्र गति से प्रगति कर रहा है।
1: 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है। दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने तथा स्वदेशी उत्पादों के उपयोग पर अधिक बल देने की आवश्यकता बताई।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में केंद्र और राज्यों को एक साथ लाकर महत्वपूर्ण क्षेत्रीय प्राथमिकताओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय लक्ष्यों के लिए साझा जिम्मेदारी को बढ़ावा देना और ये सुनिश्चित करना है कि विचार विमर्श से शासन और सेवा वितरण में व्यापक सुधार हो सके। सरकार ने चीनी व्यापारियों के लिए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल कर दी है। ये नियम 15 सितंबर से 30 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। एक रिपोर्ट।
2: संशोधित प्रावधानों के तहत कोई भी चीनी व्यापारी किसी भी भंडार को प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों से अधिक समय तक नहीं रख सकता है। चीनी व्यापारी देश भर में किसी भी समय और किसी भी स्थान पर 2000 क्विंटल से अधिक चीनी का भंडार नहीं रख सकता है। हालांकि कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के विशिष्ट बाजार आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए भंडार रखने की सीमा 4000 क्विंटल ही रहेगी। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा कि कोलकाता उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी खरीदता है और उत्तर पूर्वी क्षेत्र सहित देश के पूर्वी हिस्से को इसकी आपूर्ति करता है, इसलिए कोलकाता और उसके आसपास के महानगरीय क्षेत्रों के लिए 4000 क्विंटल की मौजूदा सीमा को बरकरार रखा गया है। भानु के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सरकार ने प्याज के मौसमी मूल्य दबाव को कम करने के लिए कांदा एक्सप्रेस और सड़क परिवहन के माध्यम से बफर स्टॉक की सुनियोजित और लक्षित आपूर्ति शुरू कर दी है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक ट्रकों की व्यवस्था के साथ 19 शहरों में खुदरा हस्तक्षेप प्रयासों का विस्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: नासिक से कांदा एक्सप्रेस से 450 मीट्रिक टन प्याज दिल्ली पहुंचा और इसे वाराणसी, लखनऊ, चंडीगढ़, अमृतसर तथा दिल्ली एनसीआर में वितरित किया गया है। 840 मीट्रिक टन प्याज कल चेन्नई पहुंचा और इसे तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में वितरित किया जाना है। मंत्रालय ने बताया कि मौजूदा बाजार स्थितियों और मूल्य रुझानों के आधार पर लगभग 1000 मीट्रिक टन प्याज सड़क मार्ग से प्रमुख उपभोग केंद्र तक पहुंचाया जा रहा है। मंत्रालय ने सूचित किया कि लगभग 3400 प्याज उत्पादक किसानों को 210 करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किया जा चुका है। मंत्रालय ने बताया कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने से बाजार में उपलब्धता में सुधार हुआ है और बिक्री शुरू होने के अगले दिन से कीमतों में गिरावट आई है। समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
4: Every great journey begins with people coming together to listen, to learn, to imagine what's possible. This is the BRICS 2026, a moment where leaders, innovators, businesses and communities from the BRICS nations come together to strengthen partnerships. India welcomes the BRICS countries as the grouping marks the 20 years of its establishment.

0: in 2026. BRICS Summit 2026 is being hosted in Bharat Mandapam, New Delhi from 12th to 13th September 2026 under India's chairship theme, Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability with a people-centric approach and the spirit of humanity first. Because when we work together, possibilities become progress.
1: Update रहे, आगे रहे. Expert at AIR News Hindi और Instagram पर AIR News Alerts को follow करें.
2: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है. अमेरिका ने ईरान में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC को निशाना बनाकर नए सिरे से आक्रमण शुरू कर दिए हैं. ईरानी मीडिया के अनुसार बंदर अब्बास, होर्मोज, असालवे, ज़िरोफ्त, केशन द्वीप सहित कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनी गई. वहीं अमरीकी सेंट्रल कमांड ने कहा है कि उनकी ओर से ईरानी सेना को निशाना बनाकर किए गए हमले पूरे हो चुके हैं. इस दौरान वायु रक्षा क्षेत्रों, बारूदी सुरंगों की क्षमता वाली जगहों और संचार संबंधी केंद्रों सहित कई प्रमुख स्थानों को निशाना बनाया गया. ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमरीकी हमले में कोहिस्ताक शहर में एक शादी समारोह के दौरान एक घर को भी निशाना बनाया गया, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई और 50 से अधिक लोग घायल हो गए. अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में चेतावनी दी है कि ईरान की ओर से इस हमले के जवाब में किसी भी प्रकार की कार्रवाई का और भी कड़ा जवाब दिया जाएगा. नेपाल में 19 सदस्यीय भारतीय फोरेंसिक दल ने फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ मिलकर बाढ़ से प्रभावित लोगों की पहचान में सहायता के लिए डीएनए के नमूनों की जांच शुरू कर दी है. नेपाल में आई बाढ़ में जानमाल का भारी नुकसान हुआ है और बड़ी संख्या में लोग लापता हो गए हैं. नेपाल पुलिस ने बताया कि कल शाम तक 1068 शव बरामद किए गए, जिनमें से 400 शवों के केवल आंशिक अवशेष ही मिले, जिससे पहचान प्रक्रिया जटिल हो गई. बाढ़ के बाद मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, इसीलिए अधिकारियों ने पहचान के प्रयासों में सहायता के लिए कई लावारिस शवों से डीएनए नमूने एकत्र किए हैं. चितवन जिले में अब तक सबसे अधिक शव बरामद हुए हैं. पहचान के लिए डीएनए नमूने एकत्र करने के बाद अधिकारियों ने नदी किनारों पर खुले स्थानों में सैकड़ों शवों को दफना दिया है. नेपाल में आई त्रासदी के बाद बिहार के सीमावर्ती जिलों में भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है. हमारी संवाददाता ने बताया है कि भागलपुर में नदी का जलस्तर बढ़ने और कटाव के कारण स्थिति गंभीर बनी हुई है.
3: गंगा के तेज कटाव के चलते नवगछिया प्रखंड में वर्षों पुराने दुर्गा मंदिर, हनुमान मंदिर और करीब 500 मीटर लंबा जमींदारी बांध गंगा में समा गया है. प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि गंगा की धारा में अप्रत्याशित बदलाव से कटाव गंभीर हो रहा है.
4: भागलपुर में खरीक ब्लॉक का शंकरपुर गाँव है, वहाँ पे गंगा की धारा कुछ बदलने की प्रवृत्ति हो रही है. यह बात सही है कि स्थिति वहाँ पर जो है उससे थोड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हमारे सभी वरीय पदाधिकारी गए हुए हैं.
3: इधर सारण, वैशाली, बेगूसराय, बक्सर, जहानाबाद, नवादा और औरंगाबाद में प्रमुख नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी से कई स्थानों पर बाढ़ की स्थिति बनी हुई है. सविता पारीक, आकाशवाणी समाचार, पटना.
2: वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर आज मूसलाधार बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में तेज बारिश का अनुमान लगाया है. विभाग के अनुसार आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, रायलसीमा, कर्नाटक और तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में छिटपुट बारिश की संभावना है, जबकि कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में तेज बारिश हो सकती है. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. इस दीक्षांत समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टरेट और स्वास्थ्य विज्ञान कार्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्रों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी. बेल्जियम के प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर आज से 3 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगे. इस दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे और आपसी हितों के सभी क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होगी. भारत और अमेरिका महत्वपूर्ण खनिजों के विषय में और अधिक मिलकर काम करने के लिए सहमत हो गए हैं. वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट के बीच हुई बैठक के बाद इस पर सहमति बनी. इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच लंबे समय से चली आ रही आर्थिक साझेदारी को मजबूत करना है. भारत के शटलर लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज ग्वांगडोंग प्रांत के शेंजेन में आयोजित चाइना मास्टर्स सुपर 750 बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत करेंगे. शीर्ष वरीयता प्राप्त सात्विक साईराज

0: रेड्डी और चिराग शेट्टी भी पुरुष युगल में खेलते नजर आएंगे। इससे पहले भारत की उन्नति हुड्डा कल टूर्नामेंट से बाहर हो गई। हुड्डा महिला एकल के पहले दौर में दक्षिण कोरिया के विश्व नंबर 12 किम गांग यून से सीधे गेम में 10-21, 18-21 से हार गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने अफगानिस्तान के साथ 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। कप्तान श्रेयस अय्यर होंगे, उपकप्तान तिलक वर्मा को बनाया गया है। 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी भी टीम का हिस्सा है। 13 सितंबर को पहला मैच खेला जाएगा, दूसरा मैच 15 सितंबर को, सीरीज का अंतिम मैच 17 सितंबर को खेला जाएगा। तीनों मैच नई दिल्ली में खेले जाएंगे।
1: खबरों और अपडेट्स के लिए कभी भी कहीं भी एक्स पर @AIRNews हिंदी और फेसबुक पर ऑल इंडिया रेडियो न्यूज को फॉलो करें।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
2: धन्यवाद फरहत। वैश्विक चुनौतियों के बीच विकास की गति जारी रखने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने दिया स्वदेशी का मंत्र। एक बार फिर से सोना खरीदारी और विदेश भ्रमण से दूर रहने को कहा। दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। नदियों का जलस्तर बढ़ने के बीच नेपाल में बाढ़ की चेतावनी, जनसत्ता की खबर है। अमर उजाला ने वहां की तस्वीरें प्रकाशित करते हुए लिखा है, नेपाल में जल प्रलय। पत्र ने दक्षिण पश्चिम मानसून के सक्रिय होने का समाचार भी दिया है। मौसम का कहर, उत्तराखंड में 11 की मौत, 19 राज्यों में भारी बारिश के आसार। छत पर मुफ्त सोलर पैनल लगाएगी सरकार, औसत बिजली खपत 400 यूनिट होने पर मिलेगा फायदा। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, दिल्ली में घर बैठे ही मोबाइल से संपत्ति की रजिस्ट्री करा सकेंगे। हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, रजिस्ट्री होते हुए दस्तावेज खरीदार के डिजी लॉकर पहुंच जाएंगे। एआई ने बढ़ा दी वेबसाइटों की मुश्किलें, गूगल सर्च नहीं, यूजर्स सीधे एआई से पूछ रहे हैं सवाल। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है। जनसत्ता ने नादिया में जन्माष्टमी के त्योहार से पहले भगवान कृष्ण की मूर्ति को अंतिम रूप देते हुए कलाकार की मनमोहक तस्वीर प्रकाशित की है। डिब्बा बंद भोजन का आंत का कैंसर भी बढ़ा रहा है। एम्स के अनुसार हर तीसरे व्यक्ति को गैस्ट्रो की परेशानी, खराब खानपान और जीवन शैली वजह है। हिंदुस्तान में है, पेट को स्वस्थ रखने के लिए पानी का अधिक सेवन और फाइबर युक्त भोजन लेने की दी सलाह।
0: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से स्वदेशी उत्पादों को अपनाने और सोने की अनावश्यक खरीद तथा विदेश में विवाह आयोजन से बचने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली में जल शक्ति मंत्रालय के विभागीय शिखर सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। सरकार ने चीनी की भंडारण सीमा 4000 क्विंटल से घटाकर 2000 क्विंटल की। अमेरिका ने ईरान के अंदर इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के ठिकानों पर फिर हमले किए। बंदर अब्बास और होर्मुज में धमाकों की आवाज सुनी गई। भारतीय फोरेंसिक टीम ने नेपाल में बाढ़ के पीड़ितों की पहचान के लिए डीएनए जांच शुरू की। और बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन, किदांबी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेंजेन में चाइना मास्टर सुपर 750 में अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम शगुन चोपड़ा। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिन्यूज कॉल टू एम्ब्रेस स्वदेशी गुड्स एंड अवॉइड अननेसेसरी परचेज ऑफ गोल्ड एंड डेस्टिनेशन वेडिंग्स अब्रॉड। Prime Minister to address valedictory session of Departmental Summit of Jal Shakti Ministry in New Delhi today. Government reduces stock holding limit of sugar from 4 to 2,000 quintals. US begins fresh strikes on IRGC targets inside Iran, explosions heard in Bandar Abbas and Hormuz. Indian forensic team begins DNA analysis to identify flash flood victims in Nepal. And India's leading shuttlers Lakshya Sen, Kidambi Srikanth and Tanvi Sharma to begin their campaigns at China Master Super 750 in Shenzhen today. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi has renewed his call to embrace Swadeshi goods and avoid unnecessary purchase of gold and destination weddings.

0: abroad. In a video message, the Prime Minister asked Indians to shun leisure trips abroad, avoid getting married overseas, and refrain from buying gold unless necessary.
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुप्रत करेंगे।
0: मिस्टर मोदी कंग्रेचुलेटेड द कंट्री ऑन रिकॉर्डिंग 7.8% इकोनॉमिक ग्रोथ एंड स्पोक ऑफ द नीड टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड गिव ग्रेटर एम्फेसिस टू स्वदेशी प्रोडक्ट्स। द प्राइम मिनिस्टर सेड India is progressing rapidly despite global uncertainty, wars, crises and disruptions to supply chains.
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है, लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूँ उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का एक प्रतिबिंब है, दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: टेकिंग अ स्वाइप एट हिज क्रिटिक्स, He said some people within the country drowned in an atmosphere of despair are spreading the lies all around.
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: Prime Minister Narendra Modi will address the valedictory session of the Ministry of Jal Shakti's departmental summit in New Delhi today. The two-day departmental summit, which commenced yesterday, is the first in a series of departmental summits envisioned by the Prime Minister to strengthen the spirit of Team India and deepen cooperative federalism. The summit brings together the centre and states to deliberate on critical sectoral priorities and evolve time-bound action plans. The government has reduced the stock holding limit for sugar dealers from 4,000 quintals to 2,000 quintals, effective from 15th of this month till 30th of November this year. Our correspondent reports that the new stock limit is aimed to curb hoarding and speculative trading, protect consumer interest by ensuring adequate availability and price stability.
2: Currently, a stock holding limit of 4,000 quintals on sugar dealers across the country is effective from 1st of the last month. Under the amended provisions, a sugar dealer shall not hold any stock for a period exceeding 30 days from the date of receipt of such stock. The sugar dealer shall not also keep sugar in stock at any time and in any place throughout the country in excess of 2,000 quintals. However, the stock holding limit shall remain at 4,000 quintals for Kolkata and its extended metropolitan areas, considering the specific market requirements of the region. The Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution said that the Kolkata area is sourcing sugar from Uttar Pradesh and Maharashtra and supplying to the eastern part of the country, including the northeastern region. With Bhanu, Saklan Akhtar for Akashvani News, Delhi.
0: The government said that the country has adequate availability of onion and it has begun a calibrated and targeted release of buffer stocks through Kanda Express and road transport to ensure moderation of seasonal price pressures. The Consumer Affairs, Food and Public Distribution Ministry said that retail intervention efforts have expanded significantly across 19 cities, supported by the dispatch of over 30 trucks to ensure widespread availability. Agriculture and Farmers Welfare Minister Shivraj Singh Chauhan reviewed the progress of the Prime Minister Dhan Dhanya Krishi Yojana at a meeting in New Delhi yesterday. The meeting focused on accelerating implementation of the scheme in the 100 identified districts, strengthening convergence among schemes and improving district-level performance for farmers. More from our correspondent.
3: The Ministry of Agriculture and Farmers Welfare said that the average score of the 100 districts across the six objectives of the scheme increased from 22.54 in April 2026 to 38.85 in July 2026.

0: करने की अपील की है। वज़ीर-ए-आज़म आज नई दिल्ली में जल शक्ति की वजारत के महकमा जाती इजलास के इख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। हुकूमत ने चीनी के जखीरे की हद 4000 क्विंटल से कम करके 2000 क्विंटल कर दी है। अमेरिका ने ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC के ठिकानों पर नए हमले शुरू किए। बंदर अब्बास और हुरमुज में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। भारत की फोरेंसिक टीम ने नेपाल में अचानक आने वाले सैलाब के महलुकीन की शिनाख्त के लिए DNA जांच शुरू कर दिया है। और भारत के सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत और तन्वी शर्मा आज शेषंस में मुनाकिदा चाइना मास्टर्स सुपर 750 टूर्नामेंट में अपनी मुहिम का आगाज करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर स्वदेशी मसनूआत को अपनाने और गैर जरूरी तौर पर सोना खरीदने और बैरून मुल्क शादियों की तकरीबात मुनाकिद करने से गुरेज करने की अपील की है। एक वीडियो पैगाम में वज़ीर आज़म ने भारतीय शहरियों से कहा कि वह तफरीही सफर के लिए बैरून मुल्क जाने से गुरेज करें, बैरून मुल्क शादियां न करें और जब तक जरूरी न हो सोना खरीदने से भी परहेज करें।
1: स्वदेशी का मंत्र वोकल फॉर लोकल, विदेशों की यात्राएं अगर घूमने फिरने जाते हैं तो नहीं करना चाहिए, शादी ब्याह विदेशों में करते हैं नहीं करना चाहिए, मेड इन इंडिया के मंत्र को जीना चाहिए और जरूरत न हो तो सोना भी नहीं खरीदना चाहिए। हम जितना ज्यादा स्वदेशी पर बल देंगे, जितना आत्मनिर्भर पर बल देंगे, मुझे पक्का विश्वास है जब आजादी के 100 साल होंगे हम हमारी युवा पीढ़ी को विकसित भारत सुपुर्द करेंगे।
0: जनाब मोदी ने मुल्क को 7.8% की इक्तिसादी शरह तरक्की हासिल करने पर मुबारकबाद दी और खुद किफालत को फरोग देने और स्वदेशी मसनूआत पर ज्यादा जोर देने की जरूरत के बारे में बात की। वजीर आजम ने कहा कि आलमी सतह पर गैर यकीनी की सूरत हाल, जंगों, बहरानों और सप्लाई चेन में रुकावटों के बावजूद भारत तेजी से तरक्की कर रहा है।
1: देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, 7.8% ग्रोथ, देश खुशियों से भर गया है। लेकिन देशवासियों को मैं बधाई देता हूं उनके संकल्प शक्ति के लिए, उनके पुरुषार्थ के लिए। एक सामूहिक शक्ति का प्रतिबिंब है, दुनिया युद्ध में डूबी हुई है, चारों तरफ युद्ध की खबरें आ रही, विश्व संकटों से घिरा हुआ है, सप्लाई चेन पूरी तरह डिस्टर्ब है। 2020 में कोविड काल से लेकर अब तक कहीं पर भी स्थिरता नजर नहीं आ रही, उसके बावजूद भी भारत तेज गति से प्रगति कर रहा है।
0: अपने नाकदीन की नुक्ताचीनी करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क के अंदर कुछ लोग मायूसी के माहौल में डूबे हुए हैं और वो हर तरफ झूठ फैला रहे हैं।
1: भारत के भीतर भी निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग, झूठ की गुंज चारों तरफ निराशा फैलाने में लगे हुए, इन सारी चीजों को पार करते हुए, उन सभी बातों को चीर करके देश ने 7.8% ग्रोथ हासिल किया है। हमें इस गति को बनाए रखना, हमें बढ़ना भी है और इसके लिए आत्मनिर्भर भारत बनना बहुत जरूरी है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क के नौजवान आज की मेहनत के नतीजे में अपने ख्वाबों को पूरा होते हुए देखेंगे। उन्होंने शहरियों से मुल्क की तरक्की में अपना ताउन जारी रखने की अपील की और कहा कि हुकूमत की नीयत और पॉलिसियां दुरुस्त हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शंघाई ताउन तंजीम SCO के रुकन ममालिक से अपील की है कि वह दहशतगर्दी की माली मदद, दहशतगर्दों की भर्ती, इंतहा पसंदी और महफूज पनाहगाहों के पूरे इको निजाम का खात्मा करे। कल बिश्केक में मुनाकिदा शंघाई ताउन तंजीम के 26वें सरबराह इजलास से खिताब करते हुए वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी के मामले में दोहरे मेयार की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में जल शक्ति की वजारत के महकमा जाती इजलास के अख्तितामी सेशन से खिताब करेंगे। कल शुरू हुआ दो रोजा महकमा जाती इजलास टीम इंडिया के जज्बे को मजबूत करने और इमदाद बाहमी पर मबनी विफाकियत को मुस्तहकम करने के वजीर आजम के तस्वर करदा सिलसिलेवार महकमा जाती इजलास की ये पहली कड़ी है। ये इजलास मरकज और रियासतों को अहम शोभा जाती तरजीहात और मुकर्रा वक्त के अंदर एक्शन प्लान तैयार करने पर गौरखोज करने के लिए यकजा कर रहा है। इजलास में चार अहम शोभों पर तवज्जो मरकूज की गई है, जिनमें पानी से मुतालिक बुनियादी ढांचे के प्रोजेक्टों पर बरवक्त अमल दरामद, जल संचय, जनभागीदारी, कैच दी रैन पीने के पानी के जराए की पायदारी और जल जीवन मिशन 2.0

0: शामिल हैं। हुकूमत ने चीनी के डीलरों के लिए स्टॉक रखने की हद 4000 क्विंटल से हटाकर 2000 क्विंटल कर दी है, जिसका इतलाक इस महीने की 15 तारीख से होगा और ये हुक्म इस साल 30 नवंबर तक नाफिजुल अमल होगा। हमारे नामानिगार ने बताया है कि नई स्टॉक की हद का मकसद जखीरा अंदोजी और कयास आराई पर मबनी तिजारत पर रोक लगाना और मुनासिब दस्तियाबी और कीमत के इस्तेहकाम को यकीनी बनाकर सार्फीन के मुफाद का तहफ्फुज करना है। तफसील हमारे नामानिगार से।
1: फिलहाल मुल्क भर में चीनी के डीलरों पर 4000 क्विंटल स्टॉक रखने की हद गुज़श्ता माह की पहली तारीख से नाफिजुल अमल है। तरमीम शुदा कवानीन के मुताबिक चीनी की तिजारत करने वाला कोई भी डीलर स्टॉक मौसूल होने की तारीख से 3 दिन से ज्यादा मुद्दत के लिए स्टॉक नहीं रख सकेगा। ये डीलर मुल्क भर में किसी भी जगह 2000 क्विंटल से ज्यादा चीनी नहीं रखेगा, ताहम कोलकाता और उसकी तौसीशुदा मेट्रोपॉलिटन इलाकों की मखसूस मार्केट जरूरियात के मद्देनजर इन इलाकों के लिए स्टॉक रखने की हद 4000 क्विंटल बरकरार रहेगी। सार्फीन के उमूर खुराक और अवामी तकसीम की वजारत ने कहा है कि कोलकाता का इलाका उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से चीनी हासिल कर रहा है और शिमाल मशरकी खित्ते समेत मुल्क के मशरकी हिस्से में सप्लाई कर रहा है, लिहाजा कोलकाता और उसके तौसीशुदा मेट्रोपॉलिटन इलाकों के लिए यह हद बरकरार रखी गई है। हुकूमत ने सार्फीन को यकीन दहानी कराई है कि मुल्क की मार्केट में चीनी की मुनासिब दस्तियाबी, बाकायदा फराहमी और कीमत के इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर रही है। दिल्ली से सकलेन अख्तर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: हुकूमत ने कहा है कि मुल्क में प्याज मुनासिब मकदार में दस्तियाब है और उसमें कांडा एक्सप्रेस और सड़क ट्रांसपोर्ट के जरिए बफर स्टॉक से जारी करना शुरू कर दिया है ताकि इसकी कीमतों में एतदाल को यकीनी बनाया जा सके। सार्फीन के उमूर खुराक और अवामी तकसीम की वजारत ने कहा है कि खुर्दा इकदाम को 19 शहरों में नुमाया तौर पर बढ़ाया गया है जिसकी मदद के लिए वसी पैमाने पर दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए 30 से ज्यादा ट्रकों को रवाना किया गया है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में एक मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना की पेशरफ्त की जायजा लिया। मीटिंग में 100 शिनाख्त शुदा जिलों में इस स्कीम के नफाज, तालमेल को मजबूत बनाने और किसानों के लिए जिला सतह पर कारकर्दगी को बेहतर बनाने के काम में तेजी लाने पर खास तवज्जो दी गई। पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना, फसल के तनव्वो और पायदार ज़राई तौर तरीकों को फरोग देना, फसल की कटाई के बाद जखीराकारी की सलाहियत को बढ़ाना, आपपाशी के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाना, मुख्तसर और तवील मुद्दती ज़राई क्रेडिट को मजीद बढ़ाना और हुक्मरानी और खिदमात की फराहमी को बेहतर बनाना इस स्कीम के 6 अहम मकासद हैं। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: ज़राअत और किसानों की बहबूद की वजारत ने बताया है कि इस स्कीम के 6 अहदाफ के तहत 100 जिलों का औसत स्कोर जुलाई में 16.31 पॉइंट बेहतर होकर 38.85 हो गया, जो अप्रैल के महीने में 22.54 था। वजारत ने बताया कि ये स्कीम 11 वजारतों और महकमों की 36 मरकजी स्कीमों के साथ साथ रियासती स्कीमों के इंजमाम के साथ और निजी शोबे के इश्तराक से नाफिज की जा रही है। सालाना अहदाफ के मुकाबले में पेशरफ्त की निगरानी के लिए इन 36 स्कीमों के तहत 121 इशारिये मुकर्रर किए गए हैं, जिनमें 74 आउटपुट इशारिये और 47 आउटकम इशारिये शामिल हैं। धन धान्य कृषि योजना को गुज़िश्ता बरस मरकजी काबीना की तरफ से मंजूरी दी गई थी और इसका आगाज 11 अक्टूबर 2025 को किया गया था। दिल्ली से शिवांग मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन रायपुर के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स के तीसरे जलसे तकसीम असनात में शिरकत के लिए आज रायपुर का दौरा करेंगे। ये तकरीब इस इदारे की तालीमी सफर में एक अहम संगे मील होगी, जिसमें मुमताज शख्सियतों की मौजूदगी में तलबा को डिग्रियां तफीज की जाएंगी। अमरीका ने ईरान के अंदर सिपाही पासदारान इनकलाब IRGC के ठिकानों पर ताजा हमले शुरू कर दिए हैं। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, हुरमुस, जिरोफ्ट, जजीरा, कोनार्का, चाबहार और लावान में धमाकों की आवाजें सुनी गई। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंट कॉम ने कहा है कि इसने ईरान के फौजी ठिकानों के खिलाफ हमलों का एक मरहला मुकम्मल कर लिया है।

0: मधुरिमा द साउंड ऑफ मेलोडी मधुरिमा
1: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
2: जी,
1: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
2: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
1: पर ये होगा कैसे?
2: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
1: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
2: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
1: बस समझ गया।
2: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
3: आरबीआई कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: मेहमान आएंगे, हो सकता है इंडिया मैच जीतेगा, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि अनुमान सही या गलत हो सकते हैं, लेकिन एचआईवी का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।
6: एचआईवी को लेकर अनुमान ना लगाएं, सेल्फ रिस्क असेसमेंट करें। सेल्फ रिस्क असेसमेंट के बाद अगर जरूरत हो तो पास के आईसीटीसी केंद्र पर एचआईवी टेस्ट कराएं। आई स्कैन, अनुमान छोड़िए, स्कैन कीजिए। अधिक जानकारी के लिए breakfreeindia.org पर लॉगिन करें या 1097 पर कॉल करें।

0: अपनाए।
1: उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरोद्धार कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनुमन्य सुविधाओं हेतु कृषि विभाग से संपर्क करें। कृषि विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा किसानों के हित में जारी।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें
4: 0542227658
5: 0542227658। आकाशवाणी वाराणसी से प्रत्येक सोमवार से शुक्रवार तक दिन में 12 बजे सुनिए NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।
6: आकाशवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है कार्यक्रम मधुरिमा में। श्रोताओं, बच्चों को स्कूल छोड़ते समय, ऑफिस के लिए तैयार होते समय, काम धंधे के लिए बाजार निकलते समय या दुकान खोलते समय, इस व्यस्ततम समय में मैं हूं आपका रेडियो दोस्त शशि। श्रोताओं, सितंबर दस्तक दे चुका है। अगस्त की बारिशों का पीछा छोड़ते हुए मौसम अब धीरे धीरे करवट लेने लगा है। हवा में नमी है, बादलों में थोड़ी नरमी है और है कुछ पुरानी यादें। ऐसी यादें जो ऐसे मौसम में अपने आप लौट आती है, उनके लिए जो किसी को बड़ी शिद्दत से याद करते हैं। तो आइए सितंबर के इस शुरुआत को कुछ खूबसूरत फिल्मी गीतों के साथ यादगार बनाते हैं।

श्रोताओं, अगस्त की बारिशें अब धीरे धीरे सितंबर की दहलीज पर आकर अपने अंतिम चरण में है। मौसम वही है, लेकिन उसमें एक हल्का सा बदलाव महसूस होने लगा है। कभी खिड़की पर ठहरी बूंदें, कभी कोई पुराना गीत जो अचानक बीते दिनों की याद दिला देता है।

श्रोताओं, कुछ मौसम हमें बाहर की दुनिया से जोड़ते हैं और कुछ मौसम भीतर की दुनिया से। सितंबर भी शायद ऐसा ही महीना है। बारिश बीत रही है लेकिन उसकी खुशबू अभी बाकी है, और शायद इसी वजह से बारिश के गीत सितंबर में भी उतने अच्छे लगते हैं। आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम मधुरिमा। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त शशि।

श्रोताओं, कभी कभी किसी गीत की सबसे खूबसूरत बात उसके बोल नहीं, बल्कि उससे जुड़ी हमारी अपनी कोई कहानी होती है। आपका भी कोई ऐसा गीत जरूर होगा जिसे सुनते ही आपको कोई अपना पुराना सा दिन याद आ जाता होगा।

श्रोताओं, सितंबर हमें याद दिलाता है कि मौसम बदलते रहते हैं। बारिश आती है, जाती है, धूप निकलती है और फिर बादल लौट आते हैं। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है, हर मौसम हमेशा नहीं रहता। तो सितंबर के इस महीने में अपनी कोई पुरानी खुशी फिर से याद कीजिए, किसी पुरानी दोस्त से मिलिए, बातें कीजिए और हाँ, अपने पसंदीदा गीत को जरूर सुनिए।

तो श्रोताओं, घड़ी की टिक टिक अब इशारा कर रही है कि अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। इसी उम्मीद के साथ कि सितंबर आपके लिए नई खुशियों की शुरुआत लेकर आए, फिर मिलेंगे एक नए गीत और नई कहानी के साथ।

0: Madhurima, the sound of melody. Madhurima.
1: ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी में 9:15 हो चुके हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से किया जाएगा।

0: ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है।
1: जिले की हलचल, आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए देवरिया और गोरखपुर जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं देवरिया जिले की हलचल, आलेख और स्वर है ब्रजेश शर्मा का।
2: देवरिया में प्रधानमंत्री पोषण योजना के अंतर्गत कार्यरत मिड डे मील रसोइयों के सम्मान एवं स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर लखनऊ में आयोजित रसोइया सम्मान समारोह के आयोजन का लाइव प्रसारण जिला मुख्यालय समेत जिले के सभी तहसील मुख्यालयों पर किया गया। इस दौरान कैशलेस चिकित्सा कार्ड का वितरण किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संबोधन को सुना गया। जिला मुख्यालय पर आयोजित सम्मान समारोह में सदर विधायक डॉ सोनम मणि त्रिपाठी ने कहा कि रक्षाबंधन के ठीक पहले मुख्यमंत्री द्वारा महिला रसोइयों की रिचार्ज घोषणाएं की गई है, जिससे उनके जीवन स्तर में काफी बदलाव आएगा। कैशलेस चिकित्सा कार्ड की सुविधा से उनके परिवारों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। पथरदेवा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कृषि मंत्री श्री प्रताप शाही ने कहा कि मुख्यमंत्री ने शिक्षा और पोषण व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी महिला रसोइयों, शिक्षा मित्रों एवं शिक्षकों को सम्मान देकर उनका मनोबल बढ़ाया है। सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के साथ साथ शिक्षकों एवं अकादमिकों के कल्याण के लिए भी लगातार महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। सलेमपुर में आयोजित कार्यक्रम में ग्राम्य विकास विभाग की राज्य मंत्री विजय लक्ष्मी गौतम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की सरकारें रसोइयों के सम्मान, कल्याण और सामाजिक सुरक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों में उचित दर विक्रेताओं के लाभांश वृद्धि की घोषणा से संबंधित मुख्यमंत्री के संबोधन का सजीव प्रसारण जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान सदर सांसद ससाग मणि त्रिपाठी ने कहा कि लाभांश में वृद्धि से उचित दर विक्रेताओं का सम्मान बढ़ा है। यह निर्णय उनके लिए आर्थिक रूप से लाभकारी सिद्ध होगा। जिले में दिव्यांगजनों के लिए सेवा संस्कार एवं सम्मान की भावना के साथ जिले के सभी तहसीलों में कल्याणकारी शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में दिव्यांगजनों को विभाग की योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही उनकी समस्याओं का मौके पर निस्तारण किया गया। साथ ही पात्र दिव्यांगजनों में ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। विकास की मुख्य धारा में जिले को जोड़ने के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का पारदर्शिता से क्रियान्वयन कराने के उद्देश्य से जिलाधिकारी मधुसूदन होलगी ने समीक्षा बैठक की। उन्होंने विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने का सख्त निर्देश दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। NSPWD, RED तथा सेतु निगम के निर्माणाधीन कार्यों की प्रगति का भी जिलाधिकारी ने समीक्षा की। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए हर हाल में अपेक्षित प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। जिले में बाढ़ की आशंका को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। जिले में बाढ़ का प्रभाव अभी नहीं है। जिले में बह रही घाघरा, राप्ती नदी तथा गोर्रा नदी का पानी खतरे के निशान के नीचे बह रही है। इस संबंध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामशंकर ने बताया कि
3: हमारे जनपद में अभी किसी भी ग्राम में घाघरा नदी का पानी नहीं घुसा है। राप्ती और गुर्रा नदी का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान से 2.5 से 3 मीटर नीचे बह रही है, इसलिए वहां अभी कोई खतरा नहीं है और प्रशासन इसमें अपनी सतर्क दृष्टि बनाए हुए है।
2: जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी योजनाओं की विस्तार से जानकारी लेते हुए कहा कि स्वास्थ्य योजनाओं का प्रभावी व गुणवत्तापूर्वक क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, जिससे कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ पहुंचे। उन्होंने जिले में मातृ एवं शिशु दर में कमी लाने पर विशेष जोर दिया। मरीजों को स्वास्थ्य सेवा बेहतर उपलब्ध कराने के लिए सदर सांसद ससांग मणि त्रिपाठी ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कर ट्रामा सेंटर में उपलब्ध सुविधाएं, साफ सफाई, मरीजों के उपचार से संबंधित व्यवस्थाओं की जानकारी लेते हुए मरीजों को बेहतर और त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने पर जोर दिए। हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरे जनपद में विभिन्न जगहों पर तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा का नेतृत्व जनप्रतिनिधियों द्वारा किया गया। यात्रा के दौरान वंदे मातरम के नारे गूंजे। हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर देशभक्त के नारों के साथ निकली तिरंगा यात्रा में लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तिरंगा यात्रा के समापन के दौरान राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान और देश की एकता अखंडता के प्रति संकल्प को दोहराया गया। हर घर तिरंगा अभियान के तहत स्कूलों में भी प्रतियोगिताओं का आयोजन कर छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। जिले के नगर पंचायत बरियारपुर में चौपाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान अंश सुधार एवं अंश निर्धारण, नाम त्रुटि सुधार, वरासत, फार्मर रजिस्ट्री तथा मुख्यमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई। रामपुर कारखाना विधानसभा के विधायक सुरेंद्र चौरसिया ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए पात्र लाभार्थियों से उसका लाभ उठाने की अपील की। विधायक द्वारा संबंधित किसानों में खतौनी वितरण के साथ विभिन्न योजनाओं से संबंधित पात्र लाभार्थियों में प्रमाण पत्र वितरित किया गया। मेरा रेशम मेरा अभियान 2 के तहत जिले के हरपुर निजाम में रेशम उत्पादन से 20 संक्रमण एवं स्वच्छता प्रौद्योगिकी को लेकर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान किसानों को रेशम उद्योग से जोड़ने के साथ साथ रेशम कीट पालन में स्वच्छता एवं 20 संक्रमण के वैज्ञानिक उपायों के प्रति जागरूक किया गया।
1: देवरिया जिले की हलचल के बाद आइए सुन

0: सुनते हैं गोरखपुर जिले की हलचल। आलेख और स्वर है गिरीश नारायण का।
1: गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में गोरखपुर महानगर में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। राष्ट्र प्रथम के भाव के साथ हाथ में तिरंगा लेकर पद यात्रा कर रहे मुख्यमंत्री का साथ देने के लिए हजारों कदम उसी दिशा में बढ़ चले। यात्रा का शुभारंभ करने से पहले मुख्यमंत्री ने उपस्थित विशाल जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का तिरंगा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अमिट गाथा का नाम है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष 2022 में नेशनल फ्लैग कोड में संशोधन करते हुए यह सुनिश्चित किया कि सभी नागरिक अपने घर पर राष्ट्र ध्वज को सम्मान पूर्वक लगा सके। इसी का परिणाम है कि आज देश का हर नागरिक भारत के आन बान शान के रूप में तिरंगे को अपने घर पर लगाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह तिरंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा फहराने का आह्वान का हिस्सा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि
2: भारत के आन बान और शान का प्रतीक है हमारा तिरंगा। देश की आजादी के आंदोलन के दौरान देश के स्वाधीनता संग्राम सेनानियों ने अलग अलग समय में अलग अलग प्रकार का ध्वज लेकर के देश की आजादी को एक नई गति दी थी।
1: मुख्यमंत्री ने गोरखनाथ मंदिर परिसर में नाग पंचमी के अवसर पर खेल विभाग और जिला कुश्ती संघ की ओर से आयोजित दो दिवसीय प्रदेश स्तरीय सीनियर प्राइज मनी पुरुष कुश्ती प्रतियोगिता के समापन एवं पुरस्कार वितरण समारोह को संबोधित किया। खेल के लिए खेलो इंडिया, फिट इंडिया, सांसद और विधायक खेल कूद प्रतियोगिता और ग्रामीण लीग के माध्यम से नई नई प्रतियोगिताएं आगे बढ़ी हैं। उन्होंने कहा कि अभी कॉमनवेल्थ में भारत के खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया। भारत के खिलाड़ी चौथे स्थान पर रहे, देश के लिए मेडल जीते। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खेल नीति लाकर यह व्यवस्था बनाई है कि जो भी खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीतेगा उसको सीधे सरकारी नौकरी देंगे। अब तक 500 से अधिक खिलाड़ियों को नौकरी दी गई है। खेल विभाग में सहायक निदेशक से लेकर प्रदेश पुलिस में डिप्टी SP तक का पद खिलाड़ियों को दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बहुत शीघ्र अगले महीने के अंदर फिर से 500 पदक विजेता खिलाड़ियों को यूपी पुलिस और अन्य विभागों में नौकरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रदेश के जो खिलाड़ी ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतते हैं उनको 6 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 4 करोड़ और ब्रांज मेडल जीतने वाले को 2 करोड़ रुपए यूपी सरकार की ओर से दिए जाते हैं। ओलंपिक में प्रतिभाग करने पर 10 लाख और कॉमनवेल्थ और एशियाड में 5-5 लाख की सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेल और खेल की संस्कृति को बढ़ाने के लिए सरकार के साथ समाज को जुड़ना होगा, स्वयंसेवी संगठनों को जुड़ना होगा। उन्होंने कहा कि निजी एकेडमी कोई चलाएगा तो सरकार उसको सहायता प्रदान करेगी क्योंकि वह युवाओं को तराशने का काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि स्पोर्ट्स के जिस भी क्षेत्र में निजी क्षेत्र सहयोग करेगा राज्य सरकार की खेल नीति उसमें सहयोग करने की है। उन्होंने गाजीपुर की खेल संस्कृति की चर्चा करते हुए कहा कि ओलंपिक में देश के लिए मेडल प्राप्त करने वाले 2 खिलाड़ी ललित उपाध्याय और राजकुमार पाल गाजीपुर के ही एक निजी स्टेडियम से ट्रेनिंग लेकर आगे बढ़े हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि
2: पुराने खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, पुराने उस्ताद हैं, ये कोचेज हैं, इन्होंने अपने जीवन को तपाया है, खपाया है, अलग विषय है और उनके समय में संसाधन नहीं था, प्रोत्साहन नहीं था, अन्यथा उनको भी प्रोत्साहन और संसाधन मिलता वे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम आगे कर सकते थे।
1: गोरखपुर जिले में रक्षाबंधन का त्योहार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। बहनों ने भाई की कलाई पर धागा बांधकर उनकी लंबी आयु की कामना की और भाई से अपनी रक्षा का वचन लिया। इसके साथ ही सावन मास का समापन भी हो गया। सावन मास के दौरान विभिन्न शिव मंदिरों में कांवड़ियों और श्रद्धालुओं ने भगवान भोलेनाथ का बड़े ही आस्था भाव के साथ जलाभिषेक कर पूजन अर्चन किया।
0: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: मीडियम वेव 200

तो 41.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज़ डीटीएच, डीआरएम और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। आइए सुनते हैं सूचना खोए हुए व्यक्ति के बारे में। खोए हुए व्यक्ति के बारे में पहली सूचना हमें प्राप्त हुई है कार्यालय सहायक पुलिस आयुक्त सारनाथ कमिश्नरेट वाराणसी से। खोई हुई महिला खुशबू, पुत्री सुजीत कुमार, जिनकी उम्र 20 वर्ष, रंग गेहुआ, चेहरा गोल, आंखों व बालों का रंग काला, इनकी शारीरिक बनावट सामान्य है। ये दिनांक 18 मई 2026 से अपने निवास स्थान ग्राम नेवादा, थाना चौबेपुर, कमिश्नरेट वाराणसी से लापता हैं। उक्त तिथि को इनका पहनावा काला सूट था। इनकी तलाश आसपास के स्थानों पांडेपुर, कैंट रेलवे स्टेशन और गंगा घाट पर की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चला। इनकी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

खोए हुए व्यक्ति की अगली सूचना हमें थाना जैतपुरा कार्यालय पुलिस वाराणसी से प्राप्त हुई है। विलुप्त व्यक्ति मोहम्मद यासीन पुत्र 1 लाख अहमद वारसी, जिनकी उम्र 60 वर्ष, ऊंचाई लगभग 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा औसत लंबा, आंखों व बालों का रंग काला है। ये दिनांक 22 मई 2026 से अपने निवास स्थान 40/57 के 1C अमरपुर बहलुटिया थाना जैतपुरा वाराणसी से लापता हैं। इनके हाथ पर चोट का निशान और होठ पर सफ़ेद दाग का निशान है। उक्त तिथि को इनका पहनावा ग्रे रंग की लुंगी व चेक शर्ट था। इनकी तलाश कैंट रेलवे स्टेशन, सिटी रेलवे स्टेशन जलालीपुरा, बनारस स्टेशन पर की गई, पर कुछ पता नहीं चला। इनकी जानकारी मिलने पर इनकी पत्नी सालीना बानो निवास 40/57 के 1C अमरपुर बहलुटिया थाना जैतपुर अथवा स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

खोए हुए व्यक्ति की अगली सूचना हमें थाना चोलापुर पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी से प्राप्त हुई है। नीलू राजभर पुत्री शिवनाथ राजभर, जिनकी उम्र 22 वर्ष, चेहरा गोल, लंबाई लगभग 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा गोल, आंखों व बालों का रंग सामान्य रूप से काला है। ये अपने निवास स्थान रौना खुर्द थाना चोलापुर वाराणसी से 29 मई 2026 को सुबह 10:30 से लापता है। उक्त दिवस को इनका पहनावा पीले रंग का सूट था। इन्हें स्थानीय स्तर पर तलाश करने का प्रयास किया गया, किंतु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इनकी जानकारी मिलने पर शिवनाथ राजभर पुत्र श्यामलाल राजभर, निवासी ग्राम रौना खुर्द थाना चोलापुर जनपद वाराणसी अथवा स्थानीय पुलिस को सूचित करें।

खोए व्यक्ति की आखिरी सूचना हमें कमिश्नरेट पुलिस थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से प्राप्त हुई है। खोया व्यक्ति सुशील कुमार उपाध्याय, जिनकी उम्र 34 वर्ष, लंबाई लगभग 5 फीट 5 इंच, चेहरा गोल, रंग गेहुआ, आंखों व बालों का रंग काला है। ये दिनांक 13 मई 2026 से हणियाडी थाना चौबेपुर जनपद वाराणसी से लापता है। इनकी सूचना या जानकारी मिलने पर स्थानीय पुलिस को सूचित करें। खोए हुए व्यक्ति के बारे में सूचना समाप्त हुई। प्रसारण आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से हो रहा है। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से किया जाएगा।

जबां से निकले तो रूह में उतर जाता है, अदब वो नगमा है जो दिलों को मिला देता है। जी हाँ सामिन, जब अल्फाज दिलों को जोड़ने और रूह को मुनव्वर करने का जरिया बन जाएं, तो सरहदें और फास

0: या बन जाएं, तो सरहदें और फासले खुद बखुद सिमट जाते हैं। इस खूबसूरत विरसे की तासीर ही कुछ ऐसी है कि ये बिखरे हुए ख्यालात को एक मुकद्दस साज और इंसानी जज्बात को एक नई परवाज देता है। इन्हीं पाकीज़ा और महकते एहसासात के साए में आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज से मैं निकहत सिद्दीकी आपकी रफीक़े सफ़र लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा उर्दू प्रोग्राम। पुरखलूस आदाब कबूल फरमाएं। सामिन, अदब की दुनिया में लफ्ज़ सिर्फ आवाज नहीं होते बल्कि ये इंसानी रूह की तर्जुमान होते हैं। जब ये लफ्ज़ सोच की वादियों से गुजरकर दलीलों का लिबास पहनते हैं तो तकरीर बन जाते हैं, और जब यही लफ्ज़ जज्बात की आंच में तपकर धड़कनों की लय पकड़ते हैं तो कलाम का रूप अख्तियार करते हैं। तो एक जहन की बेदारी है तो दूसरा दिल की धड़कन। तो आज की हमारी ये महफिल इन दोनों के हसीन इम्तिजाज से सजी है। इसी अदबी सफर को आगे बढ़ाते हुए आज हमारी तकरीर का उनवान एक ऐसी अजीम शख्सियत से वाबस्ता है जिसने हिंदुस्तानी थिएटर और अदब को एक नया फलसफा और मुकाम अता किया। यूं तो सामईन, अदब की तारीख में कई ऐसे नाम गुजरे हैं जिन्होंने स्टेज को चमकाया, लेकिन कुछ ऐसे दरख्शा सितारे भी होते हैं जो खुद एक तारीख बन जाते हैं। जब भी माशरे की सच्चाई, जमीन की सोंधी खुशबू और दबे कुचले आवाम के जज्बात को स्टेज पर शिद्दत से याद किया जाएगा तो एक नाम जहन के पर्दे पर सबसे पहले उभरेगा, और वो नाम है अवामी थिएटर के सरताज हबीब तनवीर का। हबीब तनवीर एक ऐसे मुनफरिद फनकार थे जिन्होंने मगरिब के बड़े बड़े थिएटर के तरीकों को तर्क करके झोपड़ियों, खेतों और गली कूचों में बसने वाली आवाम को अपना किरदार बनाया। तो बिला ताखीर आइए रुख करते हैं हबीब तनवीर के उसी अवामी और लाफानी दुनिया का, और समाप्त करते हैं ये तकरीर जिसका उनवान है हबीब तनवीर अवामी थिएटर का मुनफरिद फनकार। मुकर्रर हैं डॉक्टर मोहम्मद काशिफ।
1: हिंदुस्तानी थिएटर और उर्दू ड्रामा निगारी की तारीख हबीब तनवीर के जिक्र के बगैर नामुकम्मल है। उन्होंने ड्रामे को शाही महलों, खुशनुमा ड्राइंग रूम्स और रिवायती स्टेज की महदूद फजा से निकालकर आम आदमी की जिंदगी से जोड़ दिया था। खास तौर पर देही मुआशरे और लोक फनकारों को उन्होंने अपने ड्रामे और स्टेज का हिस्सा बनाया और उनकी आवाज को थिएटर के वसीले से एक वसी तर समाजी और सकाफती तनाजुर अता किया। यही वजह है कि हबीब तनवीर महज एक ड्रामा निगार नहीं बल्कि एक बेमिसाल हिदायतकार, शायर, अदाकार और जदीद हिंदुस्तानी थिएटर के अहम मेहमान की हैसियत से याद किए जाते हैं। हबीब तनवीर यकुम सितंबर 1923 को छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में पैदा हुए। उनका असल नाम हबीब अहमद खां था। ताहम अदबी दुनिया में उन्होंने तनवीर का तखल्लुस इख्तियार किया। इब्तदाई तालीम रायपुर में हासिल करने के बाद उन्होंने मोरिस कॉलेज नागपुर से बीए की डिग्री हासिल की। तालिब इल्मी के जमाने ही से उनके अंदर अदब और फनून लतीफा से गहरी वाबस्तगी पैदा हो चुकी थी। तालीम मुकम्मल करने के बाद हबीब तनवीर ने बम्बई का रुख किया। ये वो जमाना था जब बम्बई तरक्की पसंद तहरीक, फिल्मी सरगर्मियों, सहाफत और मुख्तलिफ फिकरी व समाजी तहरीकों का अहम मरकज बना हुआ था। उन्हें ऑल इंडिया रेडियो बम्बई में मुलाजमत मिल गई और साथ ही फिल्म और सहाफत के मैदान से भी वाबस्ता रहे। बम्बई में कयाम के दौरान हबीब तनवीर का राबता इंडियन पीपुल्स थिएट्रिकल एसोसिएशन और तरक्की पसंद मुसन्निफीन की तहरीक से हुआ। धीरे धीरे ये ताल्लुक गहरा होता गया। यही जमाना उनकी फिक्री तरबियत के लिए अहम साबित हुआ। उस दौर के तजरीबात ने उनके अंदर ये एहसास पैदा किया कि फन सिर्फ दिल बहलाने या तफरी का जरिया नहीं बल्कि समाज को समझने, लोगों को बेदार करने और उनमें तब्दीली का शऊर पैदा करने का वसीला भी बन सकता है। इटा के साथ काम करते हुए हबीब तनवीर को ये बात ज्यादा शिद्दत से महसूस हुई कि अगर थिएटर को आम लोगों तक पहुंचाना है तो उसे उनकी जिंदगी से जोड़ना होगा। उनकी जबान, उनके गीत, उनकी मुसीकी और उनकी लोक रिवायात को थिएटर में जगह देनी होगी। वो समझते थे कि जब फनकार अपने लोगों के दरमियान रहकर उनकी जिंदगी को करीब से देखता है तो उसका फन भी ज्यादा सच्चा और मुअस्सिर हो जाता है। यही ख्याल आगे चलकर हबीब तनवीर के थिएटर کی بنیادی شناخت بنا اور ان کے فنی سفر کو ایک منفرد سمت عطا کی۔ 1952

1954 में वो ड्रामे की आला तालीम के लिए यूरोप गए, जहां उन्होंने रॉयल एकेडमी ऑफ आर्ट्स बर्तानिया और जर्मनी के अजीम ड्रामा निगार बर्टोल्ट ब्रेख्त के थिएटर की पेचीदगियों का गहराई से मुताला किया। हबीब तनवीर ने अपनी किताब बैनुस्सुतूर में उनके ड्रामों का तफसील से जिक्र किया है। उनके मुताबिक हबीब तनवीर का ड्रामाई सफर 1948 से 2008 तक तकरीबन 6 दहाइयों पर मुहित है, जिस दौरान उन्होंने मुख्तलिफ जबानों में तकरीबन 72 ड्रामे स्टेज किए। उनमें उर्दू के 18 ड्रामे शामिल हैं, जो उनकी उर्दू ड्रामा निगारी से गहरी वाबस्तगी की अक्कासी करते हैं। इन 72 ड्रामों में से 25 ड्रामे उनकी तबाजात तख्लीकात हैं, जिनमें उर्दू के 10, हिंदी के 7, छत्तीसगढ़ी के 7 और एक ड्रामा अंग्रेजी का शामिल है। हबीब तनवीर की ड्रामा निगारी के कमाल की सबसे नुमाया मिसाल उनका शोहरे आफाक ड्रामा आगरा बाजार है। 18वीं सदी के अवाम दोस्त शायर नजीर अकबर आबादी की हयात और कलाम पर मबनी इस ड्रामे में उन्होंने रिवायती ड्रामाई साख्त को यकसर मुस्तरद कर दिया। ड्रामे में नजीर को रिवायती मरकजी किरदार के तौर पर स्टेज पर पेश नहीं किया गया, बल्कि उनकी शायरी को बाजार की रोजमर्रा जिंदगी, आम लोगों और मुख्तलिफ पेशों से वाबिस्ता किरदारों के जरिए जिंदा किया गया। इस तरह नजीर की मौजूदगी एक फर्द की सूरत में नहीं, बल्कि उनके कलाम, अवामी जबान और शेरी एहसास के जरिए महसूस होती है। उनका दूसरा सबसे मकबूल और आलमी सतह पर पजीराई हासिल करने वाला शाहकार चरणदास चोर है, जो राजस्थानी लोक कहानी पर मबनी है। ये ड्रामा सच्चाई और नाम निहाद अखलाकियात के तजाद को नहायत तंजीय अंदाज में पेश करता है। एक पेशेवर चोर जो अपने गुरु को सच बोलने का कौल देता है, वो अपने वादे की पासदारी की खातिर अपनी जान कुर्बान कर देता है, जबकि दूसरी तरफ रियासत के हाकिम, काजी और मलका इंतहाई मुनाफिक और फासिद दिखाए गए हैं। ये अलामिया हाकिम वक्त की अखलाकी इफलास पर गहरा तंज है। कदीम संस्कृत नाटक मृच्छ कटिकम का आजाद तर्जुमा मिट्टी की गाड़ी भी उनकी बुलंद फिक्री का सबूत है, जिसमें उन्होंने समाजी नाइंसाफी, रिश्वतखोरी और सियासी बगावत को अलामती और इस्तियाराती अंदाज में हकीकत पसंदाना पेशकश के साथ इस तरह मिलाया कि वक्त, मकाम और मुख्तलिफ अमली मनाजिर की पेशकश में पैदा होने वाली दुश्वारियां बड़ी हद तक दूर हो गईं। इस तरह क्लासिकी मतन अपनी बुनियादी शनाख्त बरकरार रखते हुए एक जिंदा और काबिले फहम थिएटर तजर्बे में तब्दील हो गया। यही फनी तवाजुन मिट्टी की गाड़ी की मकबूलियत और उसकी वसी पजीराई का अहम सबब है। इलावा अजी उनका ड्रामा शतरंज के मोहरे मुंशी प्रेमचंद के मारूफ अफसाने शतरंज के खिलाड़ी से माखूज है। इसमें अवध के जवाल पजीर नवाबी निजाम और उस दौर की जागीरदाराना जहनियत को मौजू बनाया गया है। शतरंज के खेल के जरिए हबीब तनवीर ने ऐसे तबके की तस्वीर पेश की है, जो अपने जाती मशागिल और मफादात में इस कदर उलझा हुआ है कि अपने गिर्द बदलते हुए सियासी हालात और जवाल पजीर निजाम की तरफ तवज्जो नहीं देता। यूं यह ड्रामा महज 2 शतरंज के शौकीन किरदारों की कहानी नहीं रहता, बल्कि एक पूरे अहद की बेहिसी, ऐश पसंदी और सियासी जवाल की अलामत बन जाता है। हबीब तनवीर के थिएटर की एक अहम खसूसियत उसकी लिसानी तश्कील है। उन्होंने ड्रामाई इजहार को सिर्फ मेयारी उर्दू या हिंदी तक महदूद रखने के बजाय मुख्तलिफ अवामी बोलियों और मकामी लिसानी सूरतों को भी इसका हिस्सा बनाया। बिलखसूस छत्तीसगढ़ी जबान और लोक इजहार के इस्तेमाल ने उनके थिएटर को मकामी समाज और उसकी सकाफती रिवायत से गहरा ताल्लुक अता किया। नया थिएटर के तजर्बात में मकामी फनकारों को अपनी मादरी जबान और फितरी अंदाजे इजहार के साथ अदाकारी की आजादी देना उसी लिसानी तस्वुर का हिस्सा था। हबीब तनवीर की शख्सियत और उनकी ड्रामा निगारी का मजमुई तौर पर जायजा लेने पर ये एहसास होता है कि उनका ड्रामा और स्टेज का रिश्ता वक्ती तफरीह तक महदूद नहीं था, बल्कि ये एक हमागीर फिक्री तहरीक था, जिसने तमाशाइयों को महज सहरजदा होने के बजाय उन्हें सोचने और अपने गिर्दो नवाह के समाजी व सियासी तजादात पर गौर करने पर मजबूर किया। उनके पूरी तख्लीकी सफर का अहाता करें तो ये बात खुलकर सामने आती है कि उन्होंने बर्टोल्ट ब्रेख्त के एपिक थिएटर की
نظریاتی بصیرت کو

0: छत्तीसगढ़ के लोक नाटकों और अवामी रिवायात के साथ इस खूबी से आमहांग किया कि एक नई और तवाना पहचान कायम की। उनकी शख्सियत में एक कलंदराना बेबाकी, अवाम दोस्ती और मिट्टी से गहरा इश्क कूट कूट कर भरा हुआ था, जो उनके हर ड्रामे की सतर सतर से आया होता है। आगरा बाजार से लेकर चरणदास चोर, मिट्टी की गाड़ी, शतरंज के मोहरे और दीगर तख्लीकात तक हर जगह आम इंसान, किसान, मजदूर और मुआशरे का पसमांदा तबका उनके ड्रामों का महवर रहा। उन्होंने फरसूदा जागीरदाराना इकदार, मुनाफिकाना सियासी निजाम और नाम निहाद अखलाकियात पर ऐसी जरबे लगाई कि थिएटर ऐवानों की कैद से निकलकर सड़कों, बाजारों और आम इंसानों की दहलीज तक पहुंच गया। हबीब तनवीर का सबसे बड़ा कारनामा यह है कि उन्होंने उर्दू और हिंदी थिएटर को उसकी अपनी जड़ों से जोड़ा, अवामी बोलियों को मोतबर बनाया और फन को जिंदगी का तर्जुमान किया। ये कहने में कोई तामुल नहीं कि वो महज एक ड्रामा निगार नहीं थे, बल्कि एक ऐसे सकाफती मेमार थे जिनका फन और फिक्र आने वाली नस्लों के लिए हमेशा मशले राह रहेगा और हिंदुस्तानी स्टेज की तारीख में उनका नाम एक दरख्शिंदा बाब की तरह रोशन रहेगा।
1: हबीब तनवीर, अवामी थिएटर का मुनफरिद फनकार। इस मौजू पर अभी आप तकरीर समाप्त फरमा रहे थे, मुकर्रर थे डॉक्टर मोहम्मद काशिफ। सामिन, यकीनन जहन इस वक्त अदबी सरशारी से सराबोर है और जब दिल और दिमाग पर अल्फाज का ऐसा पाकीजा असर हो तो रूह खुद ब खुद कलाम की वादियों में खो जाने को मचल उठती है। सामिन, शायरी या कलाम दरअसल दिल की धड़कनों की वो मौसिकी है जो बिना किसी साज के भी रूह को सुकून पहुंचाता है। ये जज्बातों की वो गंजीना है जहां खामोशी भी गुनगुनाने लगती है। तो मखमली अल्फाज और हसीन ख्यालात के इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए आपको जोड़ती हूँ आज के खास कलाम से खुद शायर की आवाज में। कलामी शायर हैं जनाब अनवार अब्बास इलाहाबादी। समाअत फरमाएं
2: कि हम महकते हुए फूलों के घराने से हैं, हम महकते हुए फूलों के घराने से हैं, इसलिए अब भी अलग सारे जमाने से हैं, और जिसके चेहरे रहे हर दौर में रोशन चेहरा, जिसके चेहरे रहे हर दौर में रोशन चेहरा, मुनफरिद चेहरा उसी आईना खाने से है, मुनफरिद चेहरा उसी आईना खाने से है। हम मसले जाने की कहाँ करते हैं कोई परवाह, मसले जाने की कहाँ करते हैं कोई परवाह, दस्ते हालात में तस्बीह के दाने से हैं, दस्ते हालात में तस्बीह के दाने से हैं, और उकदे जुल्फ गिराहगीर है अपना उकदा, इसी बुनियाद पे उलझे हुए शाने से हैं, और संग का अम्र सना संग की जद तक लाया, संग का अम्र सना संग की जद तक लाया, आग के दिल की खलिश आग बुझाने से हैं, आग के दिल की खलिश आग बुझाने से हैं, और चंद आँखों में रहा खून हमारा उतरा, चंद आँखों में रहा खून हमारा उतरा, और चंद आँखों में गड़े अश्क बहाने से हैं, चंद आँखों में गड़े अश्क बहाने से हैं। मक्ते का शेर है कि हामिले जौहरे तहजीबो तमद्दुन अनवार, हामिले जौहरे तहजीबो तमद्दुन अनवार, अपनी हस्ती रहे हस्ती में मिटाने से हैं, अपनी हस्ती रहे हस्ती में मिटाने से हैं। मेरे करीब मेरी दस्तरस में आया है, अरे फलक पसंद परिंदा कफस में आया है, मेरे करीब मेरी दस्तरस में आया है, फलक पसंद परिंदा कफस में आया है, और हिसार हब्ज का टूटा है बाद मुद्दत के, हिसार

0: बाद मुद्दत के हवा के झोंके का तोहफा उमस में आया है। हवा के झोंके का तोहफा उमस में आया है और किताबे नाज के औराक धीरे धीरे खुले। किताबे नाज के औराक धीरे धीरे खुले, जो पहले रंग में आया था रस में आया है। जो पहले रंग में आया था रस में आया है। मुलाहिज़ा करेंगे, न पूछ कीमते यक लम्हे निशात अफजा, न पूछ कीमते यक लम्हे निशात अफजा, ये एक लम्हा हजारों बरस में आया है। ये एक लम्हा हजारों बरस में आया है। मुलाहिज़ा करें कि जुनून ने काफ़िले तेज गाम के हमराह, जुनून ने काफ़िले तेज गाम के हमराह, खरोशे साज व सदाए जरस में आया है। हंसी की बात है लेकिन हंसे न खल्क़े खुदा, हंसी की बात है लेकिन हंसे न खल्के खुदा। गिरह जो बांधे थे बांधे हुए कतार चले, गिरह जो बांधे थे बांधे हुए कतार चले। और हमारा जिक्र मुकम्मल न होगा उसके बगैर, हमारा जिक्र मुकम्मल न होगा उसके बगैर। हमारे रब्त से मजलिस में जिक्र यार चले, हमारे रब्त से मजलिस में जिक्र यार चले। कोई रकीब की सूरत को देखना, कोई रकीब की सूरत को देखना, जिस दम हमारे बाद हमारा ही अख्तियार चले, हमारे बाद हमारा ही अख्तियार चले। सिलसिले के आखिरी शेर को मुलाहिज़ा कर लें कि गजा के तौर पे मिट्टी को जिस्म सौंप दिया, गजा के तौर पे मिट्टी को जिस्म सौंप दिया, गरज की कर्ज जो मिट्टी का था उतार चले। गरज के कर्ज जो मिट्टी का था उतार चले। जिए थे जिसके लिए उस पे मर मिटे अनवार, जिए थे जिसके लिए उस पे मर मिटे अनवार, हयाते नौ के लिए जिंदगी को वार चले। हयाते नौ के लिए जिंदगी को वार चले। बहुत बहुत शुक्रिया।
1: अभी आप जनाब अनवार अब्बास इलाहाबादी के कलाम से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे। और सामिन, हबीब तनवीर की बेमिसाल तकरीर की तज़किरे और इस मुकद्दस कलाम की सुरीली गूंज के साथ अब ये नशिस्त अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इस उर्दू प्रोग्राम को आकाशवाणी के प्रयागराज मरकज पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ मरकज से नश्र किया गया। पेशकश थी प्रदीप कुमार मिश्र की। और इसी के साथ अपनी मेजबान निकहत सिद्दीकी को इजाजत दी कुछ यूं कि अल्फाज खत्म हुए मगर जज्बात अभी बाकी है। मिलेंगे फिर कभी, अभी कई मुलाकातें बाकी है। अलविदा।
2: उर्दू कार्यक्रम संपन्न हुआ।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
4: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के लखनऊ।
5: मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलो हर्ट्ज, डीटीएच, डीआरएम, न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और ओटीटी वेब पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
6: उपभोक्ताओं

0: पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी।
1: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से।
0: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान।
1: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग।
0: डायल कीजिए
2: 0542227658।
1: नंबर एक बार फिर नोट करें
3: 0542227658।
4: मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाशवाणी का वाराणसी केंद्र है। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कलाकार हैं महुआ बनर्जी। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम में पहला देवी गीत।
5: इस विषय पर जानकारी देने के

अभी आप सुन रहे थे देवी गीत, कार्यक्रम है लोक संगीत, कलाकार हैं महुआ बनर्जी। आइए सुनते हैं इन्हीं की आवाज में सोहर।

0: अभी आप सुन रहे थे सोहर, कलाकार थी महुआ बनर्जी। कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है PCOS की समस्या और

0: इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 3 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच, तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052, बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: मीडियम वेव के मीटर पर हम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 10:01 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। कार्यक्रम के शुरुआत में हमने लिया है 1981 में आई फिल्म कुदरत से यह गीत। इस गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने और आवाज किशोर कुमार की।

0: फिल्म कुदरत से अभी आपने सुना इस गीत को। आवाज़ किशोर कुमार की थी। इस गीत को लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीत से सजाया था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गीत 1982 में आई फिल्म कामचोर से। इस गीत में आवाज़ें हैं किशोर कुमार और अलका याग्निक की, संगीत राजेश रोशन का और गीत इंदिवर के।
1: तुमसे बड़ा

फिल्म कामचोर का गीत अभी आपने सुना, इसमें आवाज़ चंद्रु आत्मा की थी, गीतकार इंदिवर और संगीत राजेश रोशन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत 1983 में आई फिल्म हीरो से। आवाज़ें अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार आनंद बख्शी।

अभी आपने सुना फिल्म हीरो से ये गीत, आवाजें अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की, गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आइए सुनते हैं 1988 में आई फिल्म दयावान से इस गीत को। गीतकार अजीज कैसी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आवाजें पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की।

अभी आपने सुना फिल्म दयावान से इस गीत को। इस गीत में आवाज़ें दी थी पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल ने। इस गीत को लिखा था अजीज़ कैसी ने और संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सत्ते पे सत्ता से। इस गीत में आवाज़ें हैं किशोर कुमार, आर डी बर्मन और भूपेंद्र की। गाने के बोल लिखे हैं गुलशन बावरा ने, संगीत आर डी बर्मन का है।

किशोर कुमार, आर डी बर्मन और भूपेंद्र की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म सत्ते पे सत्ता से ये गीत। गाने के बोल लिखे थे गुलशन बावरा ने, संगीत आर डी बर्मन का था। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सदमा से। इस गीत को गाया है सुरेश वाडेकर ने, बोल लिखे हैं गुलजार ने और संगीत इलैया राजा का है।

श्रोताओं, अभी आपने सुना फिल्म सदमा से ये गीत। इस गीत को गाया था सुरेश वाडेकर ने। गीत के बोल लिखे थे गुलजार ने, संगीत इलैयाराजा का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म सीता और गीता से। इस गीत को आवाजें दी हैं किशोर कुमार और आशा भोसले ने। गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत से सजाया है आर डी बर्मन ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म सीता और गीता से गीत। इस गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया था आर डी बर्मन ने। आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम झनकार। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत फिल्म शर्मिली से। इस गीत को गाया है किशोर कुमार और लता मंगेशकर ने। गीत को लिखा है गोपाल दास सक्सेना, नीरज ने, संगीत एस डी बर्मन का है।

0: यहाँ हमें जमाना देखे
1: तो
0: आओ चलो कहीं छुप जाए।
1: अच्छा
0: यहाँ

फिल्म शर्मिली से अभी आपने सुना इस गीत को। आवाज़ें किशोर कुमार और लता मंगेशकर की थी। इस गीत को लिखा था गोपाल दास सक्सेना, नीरज ने, संगीत एचडी परमन का था। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत जवानी दीवानी फिल्म से। आवाज़ें किशोर कुमार और आशा भोंसले की है, संगीत आरडी बर्मन का। इस गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ों में अभी आपने सुना फिल्म जवानी दीवानी से गीत। इस गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी वर्मन का। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का आखिरी गीत फिल्म आपकी कसम से। इस गीत में आवाज़ें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, गाने के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने, संगीत आर डी वर्मन का।

मीडियम वेव 241.54 मीटर यानी 1242 किलोहर्ट्ज। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR DTH DRM 1233 किलोहर्ट्ज वेव्स OTT पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र को। प्रस्तुत है आपके ईमेल संदेशों पर आधारित कार्यक्रम फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज कार्यक्रम लेकर हाजिर है आपका रेडियो दोस्त अनुपम। आप सभी को हमारा नमस्कार। तो दोस्तों, आपको तो पता है इस कार्यक्रम में हम पहले से आए हुए मेल्स को ही सम्मिलित करते हैं, लेकिन जो श्रोता कार्यक्रम में आगे जुड़ना चाहें उनके लिए हम अपनी मेल आईडी बताना चाहेंगे। हमारी मेल आईडी नोट कीजिए। मेल आईडी है AIR VNS FGEXP@gmail.com। मेल आईडी एक बार फिर से सुन लीजिए, AIR VNS FGEXP@gmail.com।

इस मेल पर आप जो भी संदेश भेजेंगे उसे अगले कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। और अभी हम शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम जिसका नाम है फरमाइशी गीत एक्सप्रेस। और आज आपको फिर बताना चाहेंगे कि आज हमारे पास जो मेल्स की संख्या है वो है 75108 75108। और इन मेल्स में आपके संदेशों को हमें छांटना है, तो हमने कुछ छांटे हैं मेल को। ये पहला मेल हम शामिल कर रहे हैं उत्तम नगर दिल्ली का भेजने वाले श्रोता हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल, भानु प्रकाश। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवाकर, निर्मला नवाकर, विशाल नवाकर। मलकापुर महाराष्ट्र से नारायण इंग्ले, सोपान तायडे, आशीष मुनकरे और इनके परिवार के सभी सदस्य। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का भी मेल हमें प्राप्त हुआ। तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, मोहम्मद यूसुफुद्दीन। मलियाना सरदना मेरठ से अनिल जैन, जैन साहब, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवयम जैन। थाना रोड बक्सर से ज्यूत गुप्ता, आशीष गुप्ता, सतीश गुप्ता, आयुष, आयुषी और सानवी गुप्ता का भी मेल हमें प्राप्त हुआ। टैगर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन अब्बासी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम यशप अब्बासी। मुंबई से अनु बढ़ जात्या, शमशुल खान, अनुराज बेनारा का भी मेल प्राप्त हुआ। अनिल कोहली, छाया कोहली, प्रियांशु कोहली ने संदेश भेजा है बंजारा नागपुर महाराष्ट्र से। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। धानोरा विटाली, तहसील नांदूरा, जिला बुलढाणा महाराष्ट्र से भगवान पाटिल, मंगेश पाटिल, सचिन पाटिल। जिला पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड से आप हैं शिवा गोप, प्रेम गोप, कपिल गोप, शिवांश गोप, संगीता गोप, लिपि गोप और दीपा गोप। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसुत आसू, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। बोहड़ा गाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत, गुड्डी भगत। आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर मोहम्मद रफी की आवाज में काली घटा फिल्म का गीत। गीतकार आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और काली घटा का ये गीत आप सुनेंगे तो वाकई लगत बाहर तो काली घटा छाई हुई है और रिमझिम फुहारों का तो पूछिए मत। तो सुनिए अपनी पसंद पर ये गीत।

कार्यक्रम में अगला मेल हमें भेजा है बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, डब्बू सम्राट, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशोरी धान खुराना। शाहनगर यवतमाल से मनवर सरला, राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल मनवर, चेतन मनवर, रोशनी मनवर, बेबी प्रियांशी।

एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोध, पटेल नगर मुगल सराय से शशि सिंह, आकाश सिंह और आकांक्षा सिंह।

परभणी महाराष्ट्र से आप हैं रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई, प्रीतेश संघई और पूरा संघई परिवार। गरीब नवाज कॉलोनी इंदौर से कुमारी वंदना मराठा, भाव मराठा, पूजा, रेखा, रघुवंशी, ललिता, जगदीश चौहान, चंदा, युवराज, बांधखेड़े, लक्ष्मी नारायण, भावगढ़ से और इनके परिवार के सभी सदस्य। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार। हरियाणा से अंकित कांगड़ा, मोनी कांगड़ा, प्रिंस बोध, सीताराम कांगड़ा, साहिल कांगड़ा। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार, अंश श्याम कुमार। मजनू कटीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक। एयरपोर्ट रोड वंदना नगर इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, यहीं से हैं स्वाति प्रयाग चौधरी, कुमारी लड्डू, देविका चौधरी। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा का भी मेल हमें प्राप्त हुआ। पिंगावाला चौक गोराया जालंधर से संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल सहनी, पिंगावाला चौक जालंधर से। सिंधिक बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वडतकर, शुभम वडतकर, पुन्नु वडतकर। आर्यनगर कोहका भिलाई से उत्तम सिंह जंगेल, मोरस जंगेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंगेल, नंदिनी जंगेल। धमधा ग्राम सुकरी कला से अमित जंगेल, शकुन जंगेल, आरुषि, ओशकार, अंजलि जंगेल। पद्मा टाकिस नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, आश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। आप सभी को हम सुनाने जा रहे हैं वारिस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और सुरेश वाटकर की आवाजों में। इस गीत को लिखा है वर्मा मलिक ने, संगीत उत्तम जगदीश का। तो काली घटा छाई है और घटा भी छाई है, तो इस समय हम लोग आनंद ले रहे हैं बारिश का, है ना। बीच में तो लग रहा था कि बारिश नहीं होगी, लेकिन अब बारिश हो रही है और खूब बारिश हो रही है। तो बारिश को एंजॉय कीजिए इस गीत के साथ।

निश्चित तौर पर जब घटा चाहती है तो बाहर आती है। और देखिए वातावरण का प्रभाव कितना पड़ता है हमारे व्यक्तित्व पर, है ना। और जब गर्मी होती तो बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन जब वातावरण और बारिश होती है तो मन भी ठंडा होता है और चारों तरफ हरियाली जब देखती है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है ना दोस्तों। तो चलिए देख, हमारा भी मन प्रफुल्लित हो रहा है क्योंकि हम तो स्टूडियो के अंदर हैं, तो यहाँ पर तो आपके मैसेज की बहार है, संदेश आपने ईमेल के द्वारा जो भेजे हैं हम उन्हीं में डूबे हुए हैं। और चलिए मैंने कुछ और संदेशों को छाटा है आपके मेल्स को, तो पढ़ते हैं। ये मेल भेजा है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबली से गजानंद येले, नवदीप येले, विश्वदीप येले, नीलेश येले ने। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा, संजय अंश वर्मा। कुटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय। दुबियाने वादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांचल राय। शेरपुर कला जिला गाजीपुर से अवधेश राय, श्रीमती प्रीति राय, नवनीत राय का भी संदेश प्राप्त हुआ। दतरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा।

रसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखीलाल वर्मा। लालगंज रायबरेली से के साहू, अमिता साहू, स्वस्तिका, रिशु, इला और वीनस। ओब्रास फोन बद्रसे, आयुषी और शुभम। पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू। सूरतगढ़ राजस्थान से भूपेंद्र मिशन, प्रभुजोत मिशन और बेबी जानवी का। कुंडलवाली महाराष्ट्र से गंगाधर सावनकर, विजय लक्ष्मी सावनकर, राजेश, राकेश और ऋषिता। आजाद नगर लक्सर हरिद्वार उत्तराखंड से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेरा जहां। रघुनाथपुरा जिला श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी गोस्वामी। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुमित रमेश साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी। गोलाबाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस टी अंसारी, आसमा खातून अंसारी। जमनिया गाजीपुर से आप हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल, स्वाति जायसवाल। गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति जायसवाल, देव कुमार जायसवाल, आर्य कुमार जायसवाल। जमनिया रेलवे स्टेशन से एसपी जायसवाल, डिंपल जायसवाल, आशुतोष जायसवाल, अभिनव जायसवाल। ग्राम नगर घोरा जिला राजनंदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, राजू लल्ला, पूजा, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। ऑरेंज सिटी नागपुर से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव, पवन राजे जाधव। सुनिए अपनी पसंद पर अभिनेत्री फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। इस खूबसूरत से गीत को लिखा है मजरू ने और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: तो आप बरसात के मौसम को एंजॉय कीजिए, आप कहीं मत जाइएगा, हम आपसे मिलेंगे इस अंतराल के बाद।
1: स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है PCOS की समस्या और इसका समाधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 3 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूलें। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का एसटीडी कोड है 0542। तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
0: अंतराल के बाद आप सभी का फिर स्वागत करते हैं कार्यक्रम फार्मेसी गीत एक्सप्रेस में, और ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। कार्यक्रम में अगला मेल हमें मिला है पटेल नगर मुगल सराय का। भेजने वाले श्रोता हैं सुनील कुमार सिंह, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी से आजन कुमार सिंह, वंदना सिंह, विनती सिंह, विनायक सिंह, मोहिनी सिंह, मोहित सिंह और इनकी प्यारी कोकुरानी। मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वकार हैदर, कनी सकीना और हसीना दिलशाद। शफी मोहम्मद सोलंकी, शाहरुख खान, मांगे खान, शहीद खान, ईदो कुमारी इसरोल बाड़मेर राजस्थान से आपने मेल भेजा है। ग्राम कुंडावल तारा पोस्ट

लाल रोड स्टेशन, जिला देवरिया, उत्तर प्रदेश से। रतिना त्रिपाठी, राखी आर्या, एंड्री, ओमनाथ सारंग, शिवांग रोली, अदिति माताजी, निर्मला त्रिपाठी। ईमेल हमें भेजा है जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, मनोज भ्याण। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति

दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा का भी संदेश हमें मिला है। लोरमी चचड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेहा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ मरावी। राज पैलेस मोहनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी स्वर्णकार, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। इन्होंने लिखा आपका धन्यवाद। तो आप सभी का भी धन्यवाद कि आप लोग इतनी शिद्दत से हमें मेल लगातार भेजते हैं। धमनी राजिम छत्तीसगढ़ से समेलाल धीवर, गोविंद धीवर, कुराल धीवर, युवांश धीवर, ममता धीवर, मुन्नी धीवर। कुछ हमारे नए श्रोता भी इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। नूर महल मैसूर सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलत जहानाज, फरहस जहानाज, रिफात जहानाज, नुजा जहानाज, शाजिया शाहिनाज और नाजिया नूरी नाज। पठान टोली कलेर से निकहत प्रवीण, सदफ आरजू और साथिया तस्नी। दिलशाद हुसैन, फातिमा सुगरा, वकार हैदर, कनी, सकीना, हसीना दिलशाद, वसीम फातिमा, मुबारकपुर रुचि तकिया, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से। तो आप सभी को हम सुनवाने जा रहे हैं आप सभी की पसंद पर मोहरा फिल्म का ये गीत, और इस गीत में आवाज दिया है उदित नारायण, अलका याग्निक और साथियों ने। इस गीत को शब्द से नवाजा है आनंद बख्शी ने, संगीत विजू शाह का। तो ये गीत सुनते ही निश्चित तौर पर हम आनंद उठाते हैं बारिश का, तो बारिश का आप भी लुत्फ उठाइए इस गीत के साथ।

तो बारिश में ज़्यादा भीगने की ज़रूरत नहीं है, भीग बारिश में बच के रहिए। और क्योंकि ज़्यादा भीगने से जानते हैं तबीयत भी ख़राब हो सकती है दोस्तों। हाँ, लेकिन ये भी होता है ना कि साल में बारिश तो एक ही बार आती है, मानसून इसी समय आता है, लोग इन्जॉय करते हैं, लेकिन थोड़ा बच के बचा के, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा है और बाढ़ का भी थोड़ा खतरा है। तो जो भी तटवर्ती इलाकों में हों उनको बचाइए, खुद भी बचिए, बच्चों को ज़रूर से उस पानी से दूर रखिए। और चलिए हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं अगला मेल किसका है। ये बेन पीछे है, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश के, मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना, सुदानम नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, रितु, मुकेश और जगताप, चितबड़ा गांव बलिया से जीसी गुप्ता, आराधना गुप्ता, नेहा, निधि, आयुषी और अनुष्का, किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, अनुराग मोहन, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया, ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे जी, गोली नांदेड़ से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार गायकवाड़, साई गायकवाड़, ग्राम पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से हमें मेल भेजा है दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा ने।

साहू पंकज साहू तिरुपति साहू भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर साहू करण राहुल साहू चंपा साहू सोनवर्षा खानपुर चुनार मिर्जापुर से मनीष आशीष अनीश और आकर्ष रामकर तालुका पंडरपुर मुक्कम पोस्ट फुल चिंचोली से जाकिर मुलाणी सुमैया मुलाणी सुबान मुलाणी समीर मुलाणी सलमा मुलाणी मुमताज मुलाणी दिलशाद मुलाणी नसीन मुलाणी के चाचा और चाचे पूरा मुलाणी परिवार बड़ी गर्भी चौराहा वाराणसी से इन्होंने लिखा आपका रेडियो दोस्त आपका स्वागत है अरुण कुमार मालवी दर्द श्री त्रिभुवननाथ मालवी अनमोल मालवी श्लोक और समस्त मालवीय परिवार गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल आर्य जायसवाल बबरी बाजार जिला चंदौली से विजय जायसवाल सरहुद जायसवाल रामनगर कदमा जमशेदपुर से एमपी जायसवाल देवंती जायसवाल चकिया बाजार जिला चंदौली से सुंदर जायसवाल और सुमन जायसवाल एडवोकेट वारिस अली खान इस्लामुन्निशा शकील अहमद शहनाज खान और दानिश ने संजय नगर ऐशबाग लखनऊ से ये मेल हमें प्रेषित किया है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा प्रियंका शर्मा तहसील रोजगंज डुंडवारा से के एच राही गुड़िया बेगम वकील प्रेमी हम्मद जमील कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा आप सभी को हम सुनवा रहे हैं नमक हलाल फिल्म का गीत संगीत बप्पी लहरी का है और इस गीत को लिखा है अनजान ने संग और आवाज किशोर कुमार आशा भोसले और साथियों की तो श्रोताओं हमने बारिश की बात की बारिश को एंजॉय कीजिए लेकिन बस बच बचा के

गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी पवार, मनीष पवार, खलीपो की बावड़ी से खुदाबख्श खलीपा, रामदेवरा से दिनेश चौहान, डांगी से बाबूराम जयपाल। अनीश राजभर ने चुनार से हमें संदेश भेजा है। लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ

0: जी मस्ती भरा गीत आप सुन रहे थे आशा भोसले किशोर कुमार की आवाज में नमक हलाल फिल्म से।
1: श्रोताओं स्वास्थ्य संबंधी फोन इन कार्यक्रम आरोग्यम आप सुनते हैं प्रत्येक रविवार दिन में 11:30 बजे। इस रविवार दिनांक 6 सितंबर 2026 को प्रसारित होने वाले कार्यक्रम का विषय है PCOS की समस्या और इसका समाधान। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारी विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर ऋचा त्रिपाठी। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी गुरुवार 3 सितंबर 2026 को प्रातः 10 बजे से 11 बजे के बीच। तो हमें फोन करना ना भूले। हमारा फोन नंबर है 222-1052। बनारस का STD कोड है 0542।

0: तो सुनते रहिए आरोग्यम आकाशवाणी वाराणसी के साथ।
1: फरमाइशी गीत एक्सप्रेस कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से अपने रेडियो दोस्त अनुपम के साथ। श्रोताओं, यह कार्यक्रम आपको कैसा लगता है अपनी प्रतिक्रिया जरूर लिखिएगा। हमारा पता नोट कीजिए, प्रतिक्रिया भेजने के लिए pkldaiarvaranasi@gmail.com। तो आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें रहेगा इंतजार और वक्त हो चला है कार्यक्रम के आखिरी गीत का और कुछ जो फरमाइश हमने छांटी हैं, आपके मेल्स को मैंने छांटा है तो उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं। कुछ श्रोताओं के नाम ये हैं, अशोक बिहार कॉलोनी पहड़िया वाराणसी से अनिल गुप्ता गोंड, रामा गुप्ता गोंड, अनुष्का कुमार गुप्ता, पूजा गुप्ता गोंड, अविरल अग्रिम गोंड, लल्लापुरा वाराणसी से अलीजा आयान खान, अलीजा और एनुल खान का भी संदेश हमें मिला है। गढ़नोखा लालगंज रोहतास बिहार से राजकिशोर सिंह चौहान, बड़क सिंह चौहान, अशोक कुमार प्रजापति, आकाश प्रजापति, शिव प्रकाश प्रजापति, राहुल प्रजापति करौता वाराणसी से, इमृति यादव ने संदेश भेजा है ग्राम बराठी पोस्ट सकल यहाँ चंदौली से, गौ लक्ष्मणी सासाराम गली नंबर 8B से कुमारी गंगा रति चौहान, राजेश कुमार अकेला, कुमारी गुड्डू चौहान, आर के सिंह चौहान, परवेज अहमद फागु सोनकर सुकुलपुरा वाराणसी से ये संदेश भेजा है, कुमार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुंभार ने। दिलदार नगर गांव पश्चिम मोहल्ला जिला गाजीपुर से जनार्दन पांडे, श्याम नारायण सिंह, दीनानाथ सिंह और कयूम शाह का भी मेल हमें मिला है। सियरा लियोन वेस्ट अफ्रीका से संदेश भेजा है शेख जियाउर रहमान ने, मानपुर साबित जिला मुरादाबाद से शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। मलियाना सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवम जैन। गांव और डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत कौर। कनाड प्लेस नई दिल्ली से डॉक्टर अर्चना और पुरुषोत्तम। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, यशस्वी वर्मा, अन्नपूर्णा वर्मा। अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कसाना ने लदावली जिला मुरादाबाद से संदेश में प्रेषित किया है। और ये शायद कार्यक्रम का आखिरी मेल होगा, कृष्णा कॉलोनी हांसी से सुभाष योगी, सुशील योगी, बब्बू डब्बू, राजू मिगलानी और बबीता मिगलानी। तो कार्यक्रम के अंत में सुनिए राम तेरी गंगा मैली फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन।

तो दोस्तों, आगामी 4 तारीख को कृष्ण जन्माष्टमी भी है, तो हम उसकी अग्रिम शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को, यानी कि फरमाइशी गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपने रेडियो दोस्त अनुपम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र से प्रसारित हो रहा था। अब आइए सुनते हैं NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोता मित्रों को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले एक सुंदर विचार। इसे भेजने वाले हैं माँ महामाया चौक मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या पटेल, दीपांजलि पटेल और दीपक पटेल जी।
2: लिखते हैं, हर सुबह एक नई शुरुआत लेकर आती है। बीते कल की चिंता छोड़कर आज को बेहतर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि छोटी छोटी अच्छी कोशिशें ही बड़ी सफलता की राह बनाती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने सुंदर और प्रेरणादायी संदेश के लिए। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: नोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया और पोता मास्टर अल कबीर।

0: व बराड़ा, जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल जी लिखते हैं,
1: खूबसूरत तस्वीरें नेगेटिव से तैयार होती हैं, वो भी अंधेरे में। इसलिए जब भी आपके जीवन में अंधकार नजर आए तो समझ लीजिए कि कोई आपके भविष्य की सुंदर सी तस्वीर का निर्माण कर रहा है।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस सुंदर संदेश के लिए, लेकिन एक बार फिर से हमारा निवेदन है कि सुविचार जरूर भेजें, पर उससे कहीं अधिक कार्यक्रमों पर लिखें, प्रतिक्रिया भेजें और प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास कीजिए।
1: एक बार ऐसा करके देखिए, सचमुच आपको बहुत आनंद आएगा।
0: जी हाँ, सच में बहुत आनंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से आपके संदेशों के लिए। तो श्रोताओं, ये भी जानिए, श्रृंखला की अगली कड़ी में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, आज एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं एक नई मजेदार और प्रेरक अनूठी जानकारी। तो विमलेश जी, क्या है वो मजेदार अनूठी बात जो हम अपने श्रोताओं के लिए लेकर आए हैं?
1: अजीत जी, बात तो सचमुच बड़ी प्रेरक है। हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो बेशक सुनने में बहुत मामूली सी लगती है, लेकिन ये हमारे जीवन के दृष्टिकोण को बदल देने की क्षमता रखती है। तो श्रोता मित्रों, जरा कल्पना कीजिए कि किसी फैक्ट्री में एक मशीन ने 20 या 30 वर्षों तक लगातार काम किया।
0: उस मशीन ने लाखों वस्तुएं बनाई, वस्तुएं बाजारों में गई, उनके कारण व्यवसाय हुआ, यानी उस मशीन ने हजारों परिवारों की रोजी रोटी में योगदान दिया। मगर अब वो पुरानी हो चुकी है और उसकी जगह नई मशीन आने वाली है
1: जी।
0: आप कहेंगे ये ठीक भी है, क्योंकि बदलती तकनीक के साथ मशीनें तो बदलती हैं।
1: श्रोता, ऐसा अक्सर होता है ना कि कई जगहों पर पुरानी मशीन को कबाड़ समझकर हटा दिया जाता है। आज हम बात करेंगे जापान में प्रचलित एक अनूठी संस्कृति के बारे में। जापान में कुछ कंपनियां और कर्मचारी उस पुरानी मशीन को हटाने या रिटायर करने से पहले खास काम करते हैं।
0: श्रोताओं, हटाए जाने से पहले उस दिन वहां के कर्मचारी मशीन के पास जमा होते हैं
1: जी।
0: वे याद करते हैं कि किस प्रकार इस मशीन ने उनका परिवार चलाया, रोजी रोटी चलाई और बच्चों को पाला। वे याद करते हैं कि किस प्रकार उस मशीन ने देश की अर्थव्यवस्था और उस देश की प्रगति में योगदान दिया।
1: थोड़ी देर वे इस बात पर भी कृतज्ञता से चर्चा करते हैं, फिर वे मशीन के सामने खड़े होकर सर झुकाते हैं और उसके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। वे कुछ क्षण रुकते हैं और कहते हैं,
0: धन्यवाद, तुमने वर्षों तक हमारा साथ दिया, तुमने पेट पालने में हमारी सहायता की। श्रोताओं, आपको विशेष रूप से बता दें कि ऐसा करना कोई सरकारी नियम नहीं है
1: जी।
0: लेकिन ये जापान में मशीनों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की संस्कृति का हिस्सा है।
1: साथियों, ये बात बहुत गहरा चिंतन और दृष्टिकोण लेकर हमारे सामने आती है। आइए जरा हम सब सोचें, अगर एक निर्जीव मशीन के प्रति इतना सम्मान हो सकता है, तो उन जीवित लोगों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए जिन्होंने हमारे जीवन में कभी न कभी योगदान दिया है।
0: जी हाँ श्रोताओं, क्या हमने कभी अपने स्कूल के उस शिक्षक को धन्यवाद के साथ याद किया जिसने कभी हमें पढ़ाया था?
1: जी,
0: माता पिता भी इस सूची में शामिल होते हैं। श्रोताओं, कड़वी सच्चाई तो ये है कि हम अक्सर उन लोगों को भूल जाते हैं जो चुपचाप हमारी जिंदगी को आसान बनाते रहते हैं
1: जी।
0: और महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, हम उनके प्रति कई बार कृतज्ञ नहीं रह पाते।
1: जी हाँ श्रोताओं, कृतज्ञता केवल धन्यवाद कह देना ही नहीं है, ये एक दृष्टिकोण है। ये स्वीकार करना है कि मेरी सफलता समृद्धि में अनेक लोगों का योगदान है।
0: जी श्रोताओं, एक बात और, आइए जरा अपने घर के चारों ओर नजर दौड़ाकर देखें। वो पुरानी कुर्सी, वो पुरानी टेबल, शायद वो हमारा पुराना कंप्यूटर
1: जी,
0: शायद वो पुरानी किताब जिसने हमें अपने जीवन का रास्ता दिखाया, क्या वे सभी हमारे आभार के पात्र नहीं है? वे सभी हमारे आभार के पात्र हैं। इस्तेमाल की हुई वस्तुएं भी हमारे जीवन का हिस्सा बन जाती हैं।
1: जी हाँ श्रोताओं, मशीनों को रिटायर करने की जापान की ये छोटी सी प्यारी सी परंपरा हमें याद दिलाती है कि जिन निर्जीव वस्तुओं से हमारा जीवन चलता है, उन्हें हमेशा सम्मान मिलना ही चाहिए।
0: तो श्रोताओं, उमंग कार्यक्रम के द्वारा आज हम जरूर ये कहना चाहेंगे कि यदि आपके जीवन में कोई पुरानी वस्तु जो अब उपयोग में नहीं आने वाली है, तो उसे भी सम्मान पूर्वक विदा कीजिए
1: जी,
0: क्योंकि उसने भी कभी न कभी आपकी सेवा की है।
1: याद रखिए, महानता इस बात में नहीं कि हमारे पास कितना है, महानता इस बात में है कि जो कुछ हमारे पास रहा है उसके प्रति हम कितने आभारी हैं।
0: श्रोताओं, हमारे देश में भी मशीनों का सम्मान विशेष अवसरों और त्योहारों पर किया जाता है जो हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है।
1: जी, आपको सूचना दे दें कि एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तकों को डाउनलोड करने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन में जाकर NCERT बुक्स PDF टाइप कीजिए, विकल्पों का अनुसरण कीजिए और पुस्तकों का लाभ उठाइए।
0: और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप NCERT के बारे में अद्यतन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि हमारे कार्यक्रमों को सुनना चाहते हैं या पाठ्य पुस्तकों को ध्वनि रूप में सुनना चाहते हैं, तो NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल पर जाइए, वहाँ आपको कक्षा 9 तक

0: मेरा नाम साक्षी है। मैं एक आईटी कंपनी में काम करती हूँ। एक दिन ऑफिस से घर आते वक्त रात को एक कार सामने चल रही थी, उसने अचानक से ब्रेक मारा। पर उसकी टेल लाइट ही नहीं चली, बस एक छोटा सा डिम बल्ब था, वो भी धुंधला सा। मुझे लगा मैं सीधा टकरा जाऊंगी, एक छोटा सा बल्ब ही तो है, पर अगर ना चले तो सब कुछ अंधेरा हो जाता।
1: वाहन चलाते समय टेल लाइट और ब्रेक लाइट का ठीक से काम करना जरूरी है, ताकि पीछे आने वालों को समय पर संकेत मिल सके।
2: और आइए अब सुनते हैं एक और कार्यक्रम, शीर्षक है कालीबाई बंगा।
3: ये कार्यक्रम राजस्थान की वीर बालिका कालीबाई बंगा के बारे में जानकारी देते हुए उल्लेख करता है कि किस प्रकार उसने भारत के स्वाधीनता के आंदोलन को और अधिक सशक्त बनाया और अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करते हुए अपना जीवन भारत माता के लिए उत्सर्ग कर दिया।
4: नमस्कार साथियों।
5: मेरा भी नमस्कार।
4: साथियों, राजस्थान की भूमि रणबांकुरों की भूमि है। यहाँ की माटी ने बहुत से वीरों, वीरांगनाओं और शहीदों को जन्म दिया है। आज हम सुनने जा रहे हैं इसी राजस्थान की भूमि की एक वीर गाथा।
5: तो आइए चलते हैं सन 1947 के पहले के राजस्थान के डूंगरपुर जिले में और पलटते हैं वहाँ के समृद्ध इतिहास के गौरवशाली पन्नों को।
4: और जब उन पन्नों को हम पलटते चले जाएंगे तो हमारी उंगलियां ठहर जाएंगी बहुत से सुनहरे पन्नों के बीच एक ऐसे पन्ने पर, जिस पर लिखी है एक बालिका के रक्त रंजित जीवन उत्सर्ग और बलिदान की गौरव गाथा।
5: आप पूछेंगे कौन थी ये बालिका, क्या है इसका परिचय, ऐसा क्या किया था इसने कि आज पूरा राष्ट्र उसे सम्मान के साथ याद करता है, क्या है इसका नाम जिसकी कीर्ति में आज अरावली की पहाड़ियों में लोग गीत गूंजते हैं और कृतज्ञ राष्ट्र उसे श्रद्धा के साथ नमन करता है।
4: तो चलिए हम बताए देते हैं, वह बालिका थी कालीबाई कलसुआ, जिसकी उम्र थी 13 वर्ष। कालीबाई कलसुआ भील जनजाति की बालिका थी।
5: आदिवासियों का गढ़ है दक्षिणी राजस्थान। इस क्षेत्र का एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले का एक गांव है रास्तापाल।

0: भारत की आजादी के पहले तक यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं था, लेकिन एक सामुदायिक स्कूल जरूर था जिसे स्थानीय प्रजा मंडल चलाता था।
1: इस पाठशाला में आदिवासियों के बालक भी पढ़ते थे और बालिकाएं भी, और इन्हीं बालिकाओं में से एक थी कालीबाई कलसुआ। इस पाठशाला के संरक्षक थे श्री नाना भाई खाट, जो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे।
0: इसी पाठशाला में एक शिक्षक थे श्री सेंगा भाई रोत, जो पूरी निष्ठा से बच्चों को पढ़ाते थे। शिक्षक सेंगा भाई बालकों को कभी अंग्रेजों के शोषण और अत्याचारों के बारे में बताते थे, तो कभी उन अंग्रेजों के चाटुकार अत्याचारी सामंतों की कहानी सुनाते थे।
1: ये बात उन दिनों की है जब पूरे देश में स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। आजादी की उत्कंठा सारे देश में हिलोरें ले रही थी, तो भला राजस्थान इसमें पीछे क्यों रहता? डूंगरपुर का प्रजा मंडल इन पाठशालाओं की मदद से आजादी का विचार जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा था। शिक्षक श्री सेंगा भाई रोत बच्चों में देश प्रेम की भावना कूट कूट कर भर रहे थे।
0: कालीबाई इन कहानियों को ध्यान से सुनती थी। सुनते सुनते उसका खून खौल उठता था। सेंगा भाई उनके लिए परम आदरणीय थे। कालीबाई अपने गुरु की परम भक्त थी। जैसा कि हमने सुना था कि इस विद्यालय का संचालन प्रजामंडल के सदस्यों द्वारा किया जाता था, प्रजामंडल के सदस्य नहीं चाहते थे कि इस विद्यालय में अंग्रेजों के विरुद्ध बात हो और देश प्रेम की चर्चा हो।
1: प्रजामंडल के सदस्य चाहते थे कि इस विद्यालय को बंद कर दिया जाए, क्योंकि इस विद्यालय में देश प्रेम की चर्चा होती थी। प्रजा मंडल के लोगों ने पाठशाला बंद करवाने के लिए एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने गांव के लोगों की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में पाठशाला के संरक्षक नाना भाई भी उपस्थित थे। नाना भाई ने इस बैठक में प्रण किया कि मैं किसी भी हाल में अपने गांव रास्तापाल की पाठशाला को बंद नहीं होने दूंगा।
0: वास्तव में वे चाहते थे कि हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, हर बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जगे। परंतु ये बात रास्तापाल के जागीरदार को नहीं पची। वो नहीं चाहता था कि गांव के लोगों में शिक्षा का प्रचार हो।
1: नाना भाई ने घर घर जाकर लोगों को समझाया, और समझाने के परिणाम स्वरूप एक भी व्यक्ति ने उस बैठक में हिस्सा नहीं लिया। गाँव के लोग जब बैठक में नहीं आए तो वो जागीरदार झल्ला उठा। उसने सारी घटना नमक मिर्च लगाकर सामंत को कह डाली।
0: और जून 1947 में डूंगरपुर महारावल के फरमान के बावजूद जब रास्तापाल गांव की पाठशाला बंद नहीं की गई, तो पुलिस सुपरिटेंडेंट और मजिस्ट्रेट दल बल सहित पाठशाला बंद कराने के लिए वहां आ पहुंचे।
1: वो दिन था